FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

0: सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कार्यक्रम विचार बिंदु में आइए सुनते हैं राष्ट्रीय समन्वय की प्रतीक गंगा विषय पर विचार।
4: विश्व की संस्कृतियों में सबसे प्राचीन संस्कृत भारतीय है। सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही वैदिक संस्कृत को विभिन्न प्रकार के विरोधी तत्वों ने प्रभावित करना चाहा, किंतु वे प्रभावहीन रहे और ये अभी तक अपनी गरिमा को बनाए हुए हैं, जबकि संसार की अन्य बहुत सी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं। इसका कारण भारतीय संस्कृत का मूलभूत गुण धर्म और विचार की वैयक्तिक स्वतंत्रता है। इसीलिए समय समय पर यहाँ धर्म के विभिन्न प्रकार उत्पन्न हुए, दूरस्थ देशों तक फैले और अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए नवीन विचारधारा के लिए मार्ग प्रशस्त कर गए। आज की भारतीय संस्कृत कितने ही दीर्घ ऐतिहासिक धर्मों, मतों, संप्रदायों, भाषाओं, जातियों और सामाजिक परंपराओं का योग है। आस्तिक और नास्तिक, भौतिक और विश्ववाद, व्यक्ति और समाजवाद इत्यादि कितनी ही मूल विचारधाराएं भारतीय दर्शन में मिलती हैं, जिनके अंतर्गत अनंत प्रकार के छोटे बड़े धार्मिक व सांस्कृतिक मत, संप्रदाय, मठ, अखाड़े, पंथ, मंडल और आश्रम बनते गए। आज की स्थिति में असंख्य धार्मिक संप्रदाय हैं, जिनमें वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर बहुत मतभेद हैं। उनके इष्टदेव अलग हैं, उपासना ग्रह अलग हैं, धर्म पालन की विधि अलग है और त्योहार व तीर्थ भी कुछ भिन्न हैं। इतना ही नहीं, उनमें से किन्हीं में आपसी मतभेद इतने उग्र हैं कि वे एक दूसरे के कट्टर

0: विरोधी हैं। भारतीय धर्म और संस्कृत की इस भिन्नता में भी एकता है, जिसे अपने अपने ढंग से सभी मानते हैं, और वह है पतित पावनी मोक्षदायिनी देव पूज्या गंगा। वर्ष के 12 महीनों में सभी प्रांतों के निवासी, जिनमें धार्मिक विचार व भाषा का बहुत अंतर है, गंगा द्वार हरिद्वार में आते हैं। सर्दी गर्मी एवं वर्षा की कठिन परिस्थितियां उन्हें गंगा स्नान के ध्येय से विचलित नहीं कर पाती। दिन हो या रात, प्रत्येक समय हर की पौड़ी पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। जनवरी व फरवरी मासों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व पर्वतीय प्रदेशों के गौर वर्ण यात्रियों की टोलियां प्रायः सफेद ऊनी वस्त्रों में हरिद्वार के शीत की शोभा बढ़ाती हैं। मार्च व अप्रैल बैसाखी पर्व पर पंजाबियों की भंगड़ा के रंग में रंगी मस्त टोलियां भागीरथी के प्रांगण में इठलाती हैं। मई जून व जुलाई मासों में गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए शांतिदायिनी गंगाधार की शरण में मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा व आसाम प्रांतों के विभिन्न भाषा भाषी आते हैं। अगस्त और सितंबर मासों की रिमझिम वर्षा का आनंद लेने हर की पौड़ी आते हैं हरियाणा के बलिष्ठ निवासी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बंगाल और गुजरात के यात्रियों का अपार जनसमुदाय माँ गंगा की जय जयकार करता हुआ हरिद्वार में उमड़ पड़ता है। अन्य सभी प्रांतों के निवासी अपनी अपनी सुविधानुसार वर्ष भर आते ही रहते हैं। इन प्रांतों के यात्रियों में सभी जातियों, वर्गों, व्यवसायों और स्तरों के भारतीय सम्मिलित होते हैं। जिस प्रकार सभी प्रांतों के निवासी भिन्नता में एकता की अनुभूति लिए माँ गंगा की शरण में आते हैं, उसी प्रकार वे अपने असंख्य धार्मिक मत वैविध्य में भी एकता की अनुभूति लिए माँ गंगा की गोद में कष्टों से मुक्ति पाने आते हैं। सबके लिए गंगा वंदनीय है, चाहे वह सनातनी, सिख, आर्य समाजी, बौद्ध, नागा, नाथ, वैष्णव, दादू, रामानंदी, जैन आदि कोई भी क्यों ना हो। 1000 वर्ष ईसा पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ ने मायापुरी हरिद्वार क्षेत्र में तप किया था। हरिद्वार के कुंभ व अर्धकुंभ पर्वों पर छोटे बड़े असंख्य धार्मिक व सांस्कृतिक संप्रदायों के मंडल व शिविर अपने पूर्ण वैभव व पताकाओं सहित अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आते हैं। इतिहास साक्षी है, कितने ही विदेशी धर्मावलंबियों ने भी गंगा के महत्व को माना है। अंग्रेज शासक गंगा जल के भौतिक गुणों के प्रभाव के आगे नतमस्तक रहे। सम्राट अकबर हरिद्वार से अपने लिए नियमित रूप से गंगा जल मंगाया करते थे। आज भी हरिद्वार से 9 मील दूर प्राण कलियर शरीफ पर आने वाले मुस्लिम यात्री सामने बहती गंगा नहर में स्नान करना बहुत अच्छा मानते हैं। उनमें से कुछ हरिद्वार घूमने और गंगा की छटा देखने भी आते हैं। भारतीय ईसाई बंधु भी अपने धर्म वैभिन्न को निभाते हुए गंगा पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और हरिद्वार स्नान करने आते हैं। इस प्रकार गंगा द्वार में भारतीयों के अलावा विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष गंगा के शीतल जल का आनंद लेने आते हैं। गंगा का सीधा संबंध मनुष्य के कर्म से है और कर्म प्रतिक्षण सभी करते ही रहते हैं। फिर भ्रम या अज्ञानतावश किए हुए दुष्कर्मों के अशुभ फलों से मुक्ति तो पतित पावनी गंगा की पावन धारा ही आसानी से करा पाती है। स्वर्ग से भारत भूमि पर गंगा का अवतरण महाराजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप उनके कुटुंबी जनों को पाप कर्मों से मुक्ति दिलवाने के लिए ही तो हुआ था। सप्त ऋषियों के अलावा राम, लक्ष्मण, पांडुपुत्रों और श्वेत आदि बहुत से महाराजाओं की यही तपोभूमि रही है। आत्मिक, मानसिक व शारीरिक शुद्धि का साधन एकमात्र गंगा ही है। इस प्रकार जहां अन्य संप्रदाय, धर्म, जाति व भाषा आपस में भिन्नता की ओर ले जाते हैं, वहीं गंगा उन्हें एक ही साथ एक ही जलधारा में शोधित कर सभी भेदभाव रहित एकता और राष्ट्रीय समन्वय के अटूट बंधन में पिरो देती है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय समन्वय

की प्रतीक गंगा विषय पर विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब सूरज की पहली किरण के साथ माँ गंगा की पवित्रता और देवाधिदेव महादेव का नाम जुड़ जाए तो सुबह का हर पल अमृत समान हो जाता है। तो आइए अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और भक्तिमय ऊर्जा के साथ करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर भजन।

जब जीवन की आपाधापी से थक कर ये मन हारने लगता है, तब माँ गंगा की लहरें और उनका पवित्र आंचल ही हमें थामता है। दिल को सुकून देने वाली ठंडी हवाएं, घाटों पर गूंजती घंटियों की आवाज़ और मैया के चरणों का वो पावन स्पर्श, सब कुछ भुलाकर बस उसी दिव्यता में लीन हो जाने का मन करता है। तो आइए इस सुंदर सवेरे चलते हैं मैया की शरण में, उनके पावन तट पर, और पूरे दिल से सुनते हैं ये भजन।

वो घाट की सीढ़ियाँ, सुबह की ठंडी हवाएं, लहरों की कलकल और मैया के चरणों का वो जादुई स्पर्श, जहाँ पहुँचते ही इंसान अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ गंगा अपने आंचल में हमें छुपाने के लिए बुला रही हों। आइए इस पावन सवेरे सीधे चलते हैं मैया के उसी सुंदर किनारे और पूरी भक्तिभाव के साथ सुनते हैं ये भक्ति गीत।

दुनिया की इस भागदौड़ में जब दिल को सच्चे सुकून की तलाश होती है तो कदम अपने आप माँ गंगा के पावन तट की ओर बढ़ जाते हैं। वो किनारा जहाँ चंदन की खुशबू है, शंख की आवाज़ है और माँ की असीम कृपा है, जहाँ बैठकर ऐसा लगता है मानो आत्मा सीधे परमात्मा से मिल रही हो। तो आइए आज की इस सुबह को और भी पवित्र बनाते हैं और सुनते हैं ये भक्तिमय गीत।

जब सुबह की ताज़ी हवा चंदन की खुशबू लेकर हमारे आंगन में आती है तो दिल सीधे प्रयाग और काशी के उन पावन तटों की कल्पना करने लगता है। मोक्षदायिनी माँ गंगा और यमुना का वो पवित्र संगम जहाँ का एक एक कण साक्षात देवतुल्य है, वहाँ बहती लहरों की आवाज़ जैसे कोई मधुर संगीत हो जो सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है।

जब अंतरात्मा से एक पुकार उठती है और ये मन सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में शीश झुकाना चाहता है, तो तब पैर अपने आप ही गंगा यमुना के पावन तटों की ओर बढ़ जाते हैं। मैया का वो किनारा जहाँ पहुँचते ही इंसानी अहंकार पिघल जाता है और सिर्फ रह जाती है भक्ति। आइए आज की इस दिव्य भोर में खुद को पूरी तरह से मैया की कृपा को सौंप देते हैं, आंखें बंद करते हैं और मन की गहराई से सुनते हैं ये भजन।

कार्यक्रम आराधना में आज आपने सुने प्रिया मजूमदार, अनुराधा पौडवाल, मुकेश अनूप जलोटा और साथियों के गाए कुछ भक्ति गीत। इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज की बात। आज की बात के साथ मैं हूं सौम्या कांडपाल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 25 मई। आइए डालते हैं एक नज़र आज के दिन की प्रमुख घटनाओं पर। 25 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। साल 1979 में जब न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ 6 साल का एक मासूम बच्चा एटन पैट्स स्कूल जाते समय अचानक गायब हो गया, तब इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने पहली बार इस दिन को नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे घोषित किया। आगे चलकर साल 2001 में इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। ये दिन सिर्फ उन बच्चों को याद करने का नहीं है जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं, बल्कि हमें ये याद दिलाने का भी है कि एक सामाजिक इंसान के तौर पर हम बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। 25 मई का दिन इतिहास के पन्नों में एक महानायक के नाम भी दर्ज है। भारत के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म आज ही के दिन 1886 में हुआ था। रास बिहारी बोस वो जाबाज थे जिन्होंने साल 1912 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। वो गदर आंदोलन के मुख्य सूत्रधार भी रहे और उन्होंने ही जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज की मजबूत नींव भी रखी थी, जिसकी कमान बाद में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। मातृभूमि के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत-शत नमन है। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता, फिल्म निर्माता, देशभक्त, राजनेता थे जिन्होंने पर्दे पर अपने जीवन

अनंत अभिनय और असल जिंदगी में अपनी मानवता से करोड़ों दिलों को जीत लिया। 25 मई 2005 को मुंबई में अंतिम सांस लेने वाले सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का आइकॉनिक किरदार निभाकर अमरता हासिल की और सिनेमा में बड़ा जोखिम उठाते हुए यादें जैसी अनूठी फिल्म भी बनाई, जो सिर्फ एक अभिनेता के साथ पूरी होने वाली दुनिया की पहली फिल्म थी और जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। वो अपनी साफ सुथरी छवि के कारण 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं उन्होंने देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना के लिए मुंबई से अमृतसर तक 2500 किलोमीटर की ऐतिहासिक महाशांति यात्रा भी की थी। इसके साथ ही अपनी पत्नी नरगिस दत्त के निधन के बाद उन्होंने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना भी की, जिसके जरिए उन्होंने जीवन भर गरीब कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज और सेवा के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। 25 मई 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद अहमदाबाद के कोचरब इलाके में अपने पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जिसे शुरुआत में कोचरब आश्रम के नाम से जाना गया। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सत्य, अहिंसा, सादगी और स्वदेशी जैसे सिद्धांतों की ट्रेनिंग देना था, ताकि वो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। बाद में खेती, पशुपालन और खादी बुनाई जैसी रचनात्मक गतिविधियों के लिए बड़े स्थान की जरूरत पड़ने पर इसे 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जो इतिहास में साबरमती आश्रम के नाम से अमर हुआ। यही वो ऐतिहासिक स्थान बना जहां से गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कई बड़ी रणनीतियां बनाई और अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की शुरुआत भी की। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को थायराइड से जुड़ी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने, इसके लक्षणों की पहचान और समय पर इलाज को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस वैश्विक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन की पहल पर हुई थी, जिसके बाद अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन सहित दुनिया भर के अन्य प्रमुख चिकित्सा संगठनों ने भी इसे अपनी मान्यता दी। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और कई महत्वपूर्ण अंगों को नियंत्रित करती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इसके विकार अक्सर समय पर पकड़ में नहीं आते। यही वजह है कि ये विशेष दिन लोगों को शुरुआती जांच कराने और इस मूक बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल पूरी दुनिया में आज के दिन मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाने वाला एक वैश्विक उत्सव है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई 2024 में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। ये तारीख बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। फुटबॉल न केवल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, बल्कि ये सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे जाकर लोगों को आपस में जोड़ने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और शांति, कूटनीति का माहौल बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए फीफा 21 से 25 मई तक फुटबॉल सप्ताह का आयोजन भी करता है, जो खेल की वैश्विक पहुंच, समानता और सामूहिक एकजुटता की भावना को प्रदर्शित भी करता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम करने वाला जहां शून्य हो जाता है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। अपने अनंत अनंत रूपों में उसकी वास्तविकता प्रकट होने लगती है। जहां हम स्वयं को खो देते हैं, वहीं उसकी वीणा बज उठती है। उसके अनंत स्वर अस्तित्व को घेर लेते हैं। ये ऐसी विलक्षण अनुभूति है जिसे कहने के लिए पाने वाला नहीं, देने वाला होता है। प्रेम को जानने वाला उसे जानने में खो जाता है, उसी में पिघल जाता है, उसी में बह जाता है। बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। प्रेम एक ऐसी गेंद है जिसे जितनी जोर से फेंका जाए, वो उतनी ही जोर से वापस हमारी ओर आती है। अगर हम किसी को सच्चे हृदय से याद करते हों, तो उस तक हमारी तरंगे पहुंचती ही हैं। इसी प्रकार जिसे भी याद किया जाए, वो हमारे पास दौड़ा चला आता है। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है। ये मनुष्य के भीतर एक विशेषता है, जो जितनी मनुष्य में होगी, उसको उतना ही स्नेह से भरपूर और खुशहाल बनाएगी। आनंद की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हम खाने पीने और भोगने की चीज़ों को ही आनंद समझ बैठते हैं, परंतु ये आनंद नहीं है। आनंद मनुष्य के भीतर ही है और इसी को लोग भगवान मानते हैं। उसी में भगवान का स्वरूप दिखता है। वो आनंद है। परमात्मा तो केवल अनुभव करने वाली चीज़ है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे

0: कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। इन पंक्तियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि जो वस्तु आनंद नहीं दे सकती वो सुंदर हो ही नहीं सकती, वो सत्य भी नहीं हो सकती। तो आनंद क्या है, सत्य क्या है, सुंदर क्या है? इसका उत्तर है कि सुंदर वो है जो शाश्वत है, नित्य है, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रेम अजर अमर है। प्रेम के आधार पर हम स्वयं व दूसरों को सुधार सकते हैं। प्रहलाद अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की अनुचित आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। प्रेम करते करते उनकी आज्ञा का पालन करना ही छोड़ दिया। हम भी ऐसे ही किसी से नाराजगी जता सकते हैं। ये उसे रास्ते पर लाने का एक उपयुक्त ढंग हो सकता है, शर्त यह है कि उसका आधार प्रेम हो। इसी तरह हमारे आनंद, शांति, खुशहाली, गौरव, गरिमा में वृद्धि होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूसरों को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि हम सबको अपना समझते हैं तो सभी हमको अपने नजर आएंगे, हमको चारों तरफ अपनापन बिखरा नजर आएगा। प्रेम पाषाणों के घरों में नहीं वरन मानव मन में निवास करता है। पृथ्वी का प्रेम ही परलोक का परमात्मा है। प्रेम ही शक्ति, भक्ति, मुक्ति का परम साधन है। प्रेम की पवित्र भावना को स्वप्न में भी हमें अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जिही रुचे, शीश देई ले जाए। जिसने एक बार प्रेम का प्याला पी लिया उसे फिर किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रेम ना तो किसी दुकान पर बिकता है और ना ही खेतों में उत्पन्न होता है। इसे प्राप्त करने के लिए अहंकार को नष्ट करना पड़ता है। जब इसका मानव मन पर पूरा अधिकार हो जाता है तो स्वयं भगवान भी उससे मिलने के लिए अधीर हो जाते हैं। तो ये थी विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः, अमेरिकादेशीयः विदेशमन्त्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारतामेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढयितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीयसुरक्षादिक्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिकादेशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्वसम्बन्धः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्णविश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिनवैश्विकपरिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्तमनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जाव्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः। अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जासुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: अमेरिका विदेश मंत्री उक्तवान यत् उभौ देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुख विषयेषु रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य 26 दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 21,900,000 भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शंभुनाथ कुर्मिणम् पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुल रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थ स्थाने अवर्तताम्। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान काले बृहत् स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचन आयोगः फाल्टा नगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे 21 दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपति भवने 26,000 प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे 660 पद्म पुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, अन्य च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेषु अतिताप कारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग

ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के

0: यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 5 बजे आज आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण। रात्रि 8:30 पर सुनिका स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये सभी कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद 7:10 पर आप सुनेंगे श्री राम चरितमानस से आज का प्रसंग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनती हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मानसिक स्वास्थ्य की ना करें अनदेखी विषय पर। इसी कार्यक्रम में सुनेगा आज के बच्चों की बदलती सोच और व्यवहार को कैसे समझें विषय पर श्रीमती किरण प्रसाद शिक्षिका बागेश्वर से पीती जाटव की क्षेत्र संकलित बातचीत। खेती की बातें आप सुनते हैं दिन में 2:30 पर। सुनेगा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु समेकित कृषि प्रणाली विषय पर डॉक्टर शेर सिंह की वार्ता। उत्तरायण कार्यक्रम में शाम 5:45 पर आज चर्चाएं होंगी विश्व फुटबॉल दिवस, सुकन्या समृद्धि योजना और मिशन लाइफ वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषयों पर। ग्राम जगत हमारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना एक कार्यक्रम शाम 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में बातचीत होगी परंपरागत कृषि विकास योजना और गुबरेला कीट नियंत्रण विषयों पर। इसी कार्यक्रम में सुनेगा जैविक खादों का प्रयोग करते कृषक मदन मोहन गिरी से प्रमोद कुमार पांडे की क्षेत्र संकलित बातचीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज आप सुनेंगे पंडित संजीव अभयंकर का हवेली बसंत में ख्याल गायन। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रमों में लोक मंजरी आप सुनते हैं प्रातः 7:30 पर।

पर सुनेगा विनोद कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दिन में 2 बजे और कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम में शाम 6:41 पर। श्रोताओं, गीतों और गजलों के कार्यक्रमों में सबरंग आप सुनते हैं सुबह 10:05 पर, सुगम संगीत सुनेगा दिन में 1:15 पर और रात्रि 10 बजे, और इसके अलावा सबरस सुनेगा रात्रि 8 बजे। श्रम संगीत के कार्यक्रमों में हमारे केंद्र से आज आप सुनेंगे प्रातः 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, सुबह 10:35 पर सुरबहार, सुबह 11 बजे सैनिकों के लिए, दोपहर 12 बजे मेरी पसंद, 2:45 पर एक ही फनकार, अपराह्न 3 बजे सदाबहार फिल्मी गीत, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष, और शाम 7:40 और रात्रि 10:30 फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियाँ हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। गायक थे ए हरिहरन, संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। वनाग्नि की घटनाओं के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डों पर जीत दर्ज हासिल की है। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। विकसित भारत की रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा

0: एमओ को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कल हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से खुले में नमाज न पढ़ने की बात कही गई है। लोक भवन नैनीताल में आयोजित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026 कल समाप्त हो गया है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट के ओवरऑल विजेता चैंपियन समर जैन, उपविजेता आशीष जैन के साथ ही बेस्ट नेट विजेता नुसरत अब्बासी और उपविजेता अंशुल छाबरा के अलावा अन्य वर्गों में जीत हासिल करने वाले गोल्फर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 21वां गवर्नर्स गोल्ड कप ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रतिभागियों के जुनून, खेल भावना और सामूहिक उत्सव का प्रतीक रहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 25 मई यानी आज नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। कोश्यारी को यह पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके दीर्घ योगदान के लिए दिया जा रहा है। सम्मान पाने पर कोश्यारी ने कहा कि समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना जीवन का उद्देश्य है और वे निरंतर ये कार्य करते रहेंगे। गंगा स्नान पर्व व बकरीद को लेकर पुलिस विशेष सतर्क रहेगी। गंगा दशहरा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आज सुबह से हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया है। हाईवे से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पौड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के साथ ही चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिले के कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों, बाजारों, मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और समिति के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील भी की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभागी वनाधिकारी महातिम यादव ने कहा कि वनों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि वनाग्नि मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही वन क्षेत्रों, नाप खेतों व आसपास के क्षेत्रों की वन विभाग सघन निगरानी रखेगी। वहीं प्रभागी वनाधिकारी सिविल सोयम पवन नेगी ने बताया कि पूर्व में बुआखाल व कालेश्वर बीत में वनाग्नि की घटना को लेकर 2 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जिला पौड़ी गढ़वाल को वनाग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है व आपदा प्रबंधन शमन व रोकथाम अधिनियम 2025 के तहत वनाग्नि को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में वर्षा न होने और लगातार बढ़ते तापमान के कारण वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए वन विभाग व प्रशासन वनाग्नि नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर निगरानी बढ़ा रहा है। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन क्षेत्रों में आग से संबंधित किसी भी गतिविधि या घटना की सूचना तत्काल वन विभाग अथवा प्रशासन को दें ताकि समय रहते आग पर नियंत्रण पाया जा सके। सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डों पर जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि टिहरी के जौनपुर व हरिद्वार की लंठौर सहकारी समिति में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दोनों समितियों में 68 वर्ष बाद पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 39 सहकारी समितियों में हुए चुनावों में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों के चुनावों में भाजपा की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और सरकार की जनहितकारी नीतियों का प्रतिफल बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने में मदद मिलेगी। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी को जोड़ने वाले पैदल मार्ग को भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने सुचारू कर दिया है। इस बार घाटी की सैर के दौरान पर्यटकों को मार्ग में हिमखंड का दीदार होंगे। गौरतलब है कि फूलों की घाटी प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहाँ जैव विविधता, सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। ये दुर्लभ वन्य जीवों, हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ सहित अन्य प्राकृतिक वास स्थल भी हैं। इन दिनों घाटी के फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और विभिन्न प्रजाति के फूल रंग बिरंगी आभा बिखेर रहे हैं। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर। प्रदेश में वनाग्नि की घटना को लेकर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए हैं। दैनिक जागरण लिखता है, बांज के जंगलों में पहुंची आग, जांच के आदेश। उत्तराखंड में SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तराखंड में मतदाता सूची शुद्धिकरण की तैयारी तेज। अमर उजाला लिखता है, प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्री फेज में 89% मैपिंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। वनाग्नि की घटनाओं के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डों पर जीत दर्ज हासिल की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने विनोद कुमार के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार

0: जाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी

0: आर ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान

0: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series, People's Padma, on Akashwani.
4: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashvani Gold today from 9:10 a.m.

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित संजीव अभयंकर का राग हवेली बसंत में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी केदार पंडित ने। आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया राग हंसध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत की है सुखविंदर सिंह ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा पर बजाया राग हंसध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत की थी सुखविंदर सिंह ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने

और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के

0: में चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कभी फुर्सत मिले तो बस आंखें बंद करना और सोचना उस ठंडी पावन लहर के बारे में जो हमारे दिल को छूकर गुजरती है। मैं बात कर रही हूँ हमारी और आपकी, हम सब की, गंगा माँ की। गंगा मैया के पानी में बहने वाला ये जल हम सभी का एहसास है। जब भी हम जिंदगी की भागदौड़ से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनके घाट की वो एक ठंडी हवा हमारी सारी थकान मिटा देती है। पहाड़ों का सीना चीर कर मैदानों से गले मिलना, अमीर हो या गरीब, हर किसी को बिना भेदभाव से अपना लेना, यही तो है उनका वो खूबसूरत समन्वय, वो तालमेल जो हमें आपस में प्यार से रहना सिखाता है। बनारस की वो शाम हो या हरिद्वार की आरती, जब गंगा की लहरें हमारे पैर छूती हैं तो सच में रूह तक सुकून से भर जाता है।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म का ये गीत सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा था सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीत था साचेत और परंपरा का। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की थी। चंडीगढ़ से थे सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, रेनू नेगी, शिल्पा, पंकज शर्मा और रोहित शर्मा। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा था विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर पेशा अमिन दीवान और आदेश कुमार काले ने। जसपुर से हमारे श्रोता थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, शमरीन परवीन, रिहान और माहिरा नूर। इसी गीत को सुनना चाहा था डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर और निशा रानी नागरिकर ने। और इसी गीत के इंतज़ार में गौतम नगर नादेर से थे प्रभाकर राजे यादव और आरती। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता थे मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और उमेश गोस्वामी। जालना जाफराबाद से इसी गीत के इंतज़ार में थे सुधाकर राजे यादव, प्रशांत जगुताई, साक्षिताई, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख। शार्दुल शहर राजस्थान से हमारे श्रोता थे राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और प्रीति रेवाड़। और नेहरू चौक पैठण से हमारे श्रोता सुरेश यादव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी सिया। भवानी नगर पैठण से थे आरती अरुण और भाऊ साहेब।

आइए अब आपको सुनवाते हैं पिपली लाइफ फिल्म का ये गीत। नगीन तनवीर की आवाज़ है, गंगाराम ने ये गीत लिखा है और संगीत दिया है नगीन तनवीर ने। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। ज़िला उज्जैन बोरखेड़ा पितरामल से हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है सतना एमपी से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और आकांक्षा मलिक ने। हमारे श्रोता सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव, अभिषेक और अपर्णा नामदेव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गोकुल चौक गंगा जल सहरसा से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव, संजय कुमार, ओम कुमार, गुणेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, बुल्की वाली, फालना झा और नया नगर सुपौल से हैं श्वेता रंजन, पप्पू, रजनीश, आनंद कुमार, आशुतोष, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार और इनके परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से मास्टर खेलो परवेज, इमराना नवाज, नवाजिद शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। इसी गीत के इंतज़ार में सुरेवाड़ी और औरंगाबाद से हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांव का, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम, सदानंद और सुभाष, अंशुमन बोरगांवकर। इसी गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहानी। शेरकोट ज़िला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। इसी गीत के इंतज़ार में हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, नीति, पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर और इनके ढेर सारे साथी। और चंडीगढ़ से इसी गीत के इंतज़ार में हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और इनके परिवारजन। तो लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर पिपली लाइफ फिल्म का ये गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

माय नेम इज खान। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। राशिद खान की आवाज़ है और संगीत दिया है शंकर एहसान और लॉय ने। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। दरियारपुर भाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले नवदीप। शेरी वडनेर अकोला से हैं बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। इसी गीत को सुनना चाहा है शार्दुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। सरगुजा मैनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन कुमारी वली और वसीम आसमा, अकरम आसमा और उल्लाह आसमा। इसी गीत को सुनना चाहा है महाराष्ट्र से अनिल, उषा, प्राची, अंशुश्री, धनश्री, प्राची और प्रियंका ने। इसी गीत के इंतज़ार में वंदना नगर एयरपोर्ट रोड इंदौर मध्य प्रदेश से हैं पूजा बबीता, शोभा रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी।

ललिता खड़के, गणेश कार्तिक नारायण और इनके ढेर सारे परिवारजन। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड इंदौर से हमारे श्रोता हैं राम लक्ष्मण खर्चे, गणेश, संजना, परी, मालती, स्वाति, प्रयाग, दीविका चौधरी और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है। दतरेंगे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने। नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं अजीज़ भाई, वसीम, महतीन भाई, मोसा करीम, नैबुद्दीन, मोहम्मद यासीन, शेख चंद्र, शेख सलीम और इनके परिवारजन। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया और इसी गीत को सुनना चाहा है। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग ने।

मोटकम माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवकिशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और

सारिक अली खान, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और बलबीर सिंह। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दौदी, प्रमोद कुमार दौदी और सौरभ दौदी जैन मंदिर वाली कुरावली से हैं। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, आसमा और मोहम्मद कैफ अंसारी। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, नीना जी, वाल्मीकि धाड़े और स्वप्निल धाड़े। खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शाले डावर, हलीमा जकीरा और आयशा खत्री। जिला धार धर्मपुरी से ईशा खत्री, जकीरा खत्री और मोहम्मद साद खत्री। बिजनौर जिला शेरकोट से मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीर, रोजी भैया, बिटू भैया, साज दरानी, हिना कौजर और इनके ढेर सारे साथी। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। और जिला उज्जैन बोर खेड़ा पितरामल से विनोद मूरत, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप सिंह पवार, प्रियांश, मोहित और रोहित। तो आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं पहचान फिल्म का ये गीत, मुकेश, शारदा और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्वीन, आइए अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, जनुजा और सोनू कक्कड़, नेहा कक्कड़ की आवाज़ों में। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, और पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और इनके ढेर सारे साथी। आकोट से हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डोबेराय। मालकोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिकलानी, अनमोल और विवान मिकलानी। छबीलपुर गुन्नौर उत्तर प्रदेश से हरवेश कश्यप, अरजीत और दिव्यांश कश्यप। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला दीपक, अनुश्री और आसमा श्याम कुंवर। नरहन स्टेट से हैं ललन मिश्रा, नूतन, अमन परासर, बेबी आराध्या और इनके परिवारजन। गाँव चौहलता बागपत से हैं संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर खटे, संगीता साक्षी, रामनिवास अग्रवाल, संजय टाउल और बिरजू परदेसी। और रायपुर से हमारे श्रोता हैं नीलू, मेघा, डॉक्टर वंदना और बिट्टू कुमार।

अनारकली बाजार जगराव से दीपिका मल्होत्रा, सुनील पाठक, कमल पाठक, बेबी गव्या, सुच्चा पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव, जाफराबाद से साक्षिताई, संचित, प्रथमेश और स्वामी, जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर तस्नीम कौशर, इशिता सहानी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सोनम वली और डॉक्टर अफजल इब्राहिम, भाटापारा देवरी से केआर साहू, आकाश कमलेश, कन्नूलाल और मुरली, पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप आरजू और गुडू, राजनगर मधुबन बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत और जय बीरू, मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर राही, सरिता सिद्धांत ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश ग्वाणकर, वैशाली, सुमित कुमारी, ध्वनि परी ग्वाणकर और इनके परिवारजन, बिलराम कासगंज से एम असलम सैफी, जैबनिशा बेगम, अकरम सद्दाम, सोनी सैफी, आबाद खान और इनके परिवारजन, और करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम, शोएब खान, नावेद खान, गुड़िया, जीशान वारसी और इनके परिवारजन। हाँ, आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया फिल्म का ये गीत। समीर का गीत, संगीत प्रीतम का है।

धरदी सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष कुमार, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा, भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जीशान अहमद, शाह नवाज अहमद सिद्दीकी और इनके ढेर सारे साथी, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन सरधना मेरठ से, आदि जैन अंश और भव्य जैन, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और इनके ढेर सारे साथी।

जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित और बेबी करवी महाराष्ट्र हिंगोली से, शाहजी पोर्ट के नंदा हनुमान और उत्तम कुमार पोर्ट के, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परे, खुशी वंदना, स्वाति प्रयाग और इनके ढेर सारे साथी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसुतासु अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और गुट्टी भगत, और जवाहर नगर उदयपुर से भाबूभाई और भारती देवी। आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं मैं हूं ना फिल्म का ये गीत। अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर ने गीत लिखा है और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

जिला महोबा बुंदेलखंड से उदय भानपाल, जयहिंद पाल, विमलेश, दीक्षा, प्रतीक्षा, दिव्यांश बघेल और इनके ढेर सारे साथी। प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, दीपेंद्र, वरिंद्र, सिमरन, अभिजीत और इनके परिवारजन। हमारे ये सभी श्रोता हैं करणवीर हाउस भटिंडा से, रेलवे कॉलोनी पंजाब से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा। इस गीत के इंतज़ार में अजमेर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा असद और अरहम हाशमी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं संतोष खटके और विनोद खटके। शाहजीनगर नादेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे। इस गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक कटनी से अनिल अमर, दिलीप वर्मा, सोनी संजय, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और इनके ढेर सारे साथियों ने। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश, सुधाकर और कुंदन। और इसी गीत को सुनना चाहा है तिलोक नगर ग्राम बहरामपुर से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन सुभाष, संतोष, दिनेश, समर, राज आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा ने। आइए इनकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, राजेंद्र कृष्ण का गीत, संगीत आर डी बर्मन का।

गुमला झारखंड से एसएम जावेद और इनके ढेर सारे साथी, अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी, चित्रा रानी, प्राजक्ता, पराग पाठक, प्रियंका अभिषेक, पल्लवी गिरीश देश पांडे और इनके परिवारजन, ग्राम पुतली कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, नयन सोमांशु और इनके परिवारजन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और इनके परिवारजन, कोम खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और इनके ढेर सारे साथी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े, मध्य प्रदेश सनावा से दिलीप मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान और इनके परिवार के सदस्य, और लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाबा फरहान, संजू सामिया, आफिया, मुमताज अमान, नीलूफर शन्नू और शब्बू। आइए हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं यारियां फिल्म का ये गीत। शफकत अमानत अली की आवाज़ है, गीत और संगीत है आर को प्रावो मुखर्जी का।

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा था टैगोर गार्डन दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और कुश छाबड़ा ने रानीगंज पश्चिम बंगाल से थे। रेहान शर्मा, रोशनी रवि, इंद्र और करणदीप, भूपेंद्र वर्मा।

तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात आपके फरमाइशी नगमों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नैतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्व

हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल के गाई इस नगमे के साथ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सतरंग। आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की गाई ये गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इसी गज़ल के साथ अब यहीं पर संपन्न होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुकदमा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिराने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद
2: हुआ। इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है।

0: ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे क्योंकि संगीतकार का परिवार है तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: सहज रूप।
1: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कहिए 11th कहिए,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल ओ भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा।
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था। तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई, और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
1: हाँ।
0: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा, तो उस तरह। और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से, संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
0: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया। मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो 1-2 फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्म

0: महिमा जो है
1: जी जी
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, जिसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है, कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता है तो नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
1: जी, जी।
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सवाल
0: हम,
1: ऐसा
0: हम,
1: है,
0: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ।
0: तो सभी को, तो बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा, त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए उनका, वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में, इंस्ट्रूमेंट में,
1: इंस्ट्रूमेंट
0: में। जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह, वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं मजी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर
0: है। उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी,
0: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
1: था। बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे साथ भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है।

0: गामक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की, जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दिए इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे, तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को, तो पूछा इतने में कर लोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर, तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे, और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, मैं बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहाँ वो उनको लोग बाहर जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एक लव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एक लव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, एक लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया, तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है, और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं सिलसिला फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। नुसरत बद्र ने ये गीत लिखा है और इस्माइल दरबार ने संगीत।

दिल का रिश्ता। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे देहरादून केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार, आकाशवाणी पॉडकास्ट में हम इन दिनों आपको पद्मश्री से सम्मानित उन शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है, और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं बातचीत में, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें उनसे बातचीत से पहले, तो भारत में जो हम चावल की खेती देखते हैं, या हम अगर अपने घरों में भी अपनी प्लेटों में खुशबूदार और लंबे चावल को परोसते हुए देखते हैं, तो इस चावल की किस्म की उपज में, पैदावार में, इसे उन्नत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में कृषि उपज, कृषि विज्ञान में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और साइंस और इंजीनियरिंग में इस साल डॉक्टर ए के सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत स्वागत हम फिर से करते हैं आपका डॉक्टर के सिंह।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। तो सबसे पहले हम चर्चा को इसी से शुरू करते हैं कि इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है।
2: मैं आकाशवाणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर यहां पर बुलाया है। मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, और इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है। बासमती चावल अपने स्वाद सुगंध के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और जो इसकी परंपरागत किस्में होती थीं, जैसे देहरादूनी बासमती, टाइप 3 आदि, तो ये किस्में लंबी होती हैं, ऊंचाई में ज़्यादा होती है इनकी ऊंचाई, और पकने में 160 दिन का समय लेती थीं, और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण अक्सर जब बाली में दाना भरता था तो ये किस्में गिर जाती थी, जिसकी वजह से इनकी पैदावार कम होती थी, मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोध का कार्य बासमती पर सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि सबसे पहले डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे, उनके द्वारा ये सोच लाई गई कि किस प्रकार से हम बासमती चावल की गुणवत्ता बौनी प्रजातियों में ले आएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बासमती चावल कम क्षेत्र में पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो उसी कड़ी में ये हमारा काम रहा। डॉक्टर स्वामीनाथन के बाद उनके छात्र डॉक्टर ए सिद्दीक, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर जमन, ये लोग काम किए, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम से छात्र के रूप में 1986 में जुड़ गया था, और तब से मैं लगातार PhD करने के बाद भी यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में शोध का कार्य बासमती पे कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, इस बारे में हम आगे बातचीत में जरूर जानेंगे किस तरह से आपने अपने करियर में और कृषि विज्ञान में इस क्षेत्र को चुना, लेकिन एक बहुत रोचक सवाल शायद हमारे देखने सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि बासमती चावल की हम उन्नत किस्म आजकल देखते ही हैं, लेकिन इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पहले भी इस पर शोध होते रहे, तो ये शोध क्यों हो रहे हैं और किस तरह से समय समय पर बासमती उन्नत हुआ है?
2: एक पहली बात तो मैंने बताई कि जो हमारी परंपरा

0: जगत किस्में थीं, अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, सभी फसलों में लगते हैं, उसी तरह से चावल में भी लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था। और तीसरा, जब जलवायु परिवर्तन जैसा कि आप जान रहे हैं हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का कृषि के ऊपर काफी विपरीत प्रभाव है, उसमें कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से ऐसी किस्मों का विकास करें जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सकें और किसान को नुकसान नहीं हो। तो ये मुख्य कारण है जिसके वजह से बासमती पे शोध करने की आवश्यकता हुई। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, चूंकि चावल बासमती का जो है अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, तो इसकी मांग भी विश्व बाजार में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसके लिए हमको ज्यादा पैदावार चाहिए होगी और एक निर्धारित क्षेत्र से चाहिए होगी जिसमें गुणवत्ता अच्छी आती है, तो इसलिए हमको अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्मों का विकास करना आवश्यक हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बासमती चावल के बारे में हमें बताया, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से और हम ये समझना चाहेंगे और ये सवाल भी सबके मन में आ रहा होगा कि क्या हर खुशबूदार लंबा चावल ही बासमती चावल है? क्या होता है बासमती चावल? कहाँ इसकी उपज ज्यादा होती है? इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं।
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आमतौर पे एक अवधारणा होती है कि सभी खुशबूदार चावल जो है बासमती होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। सारे बासमती चावल जो है ये बासमती किस्में खुशबूदार होती हैं, लेकिन सभी खुशबूदार किस्में बासमती नहीं होती हैं। तो खुशबू के साथ साथ बासमती होने के लिए चावल के अंदर कुछ और विशेष गुण होने चाहिए, जिसमें एक गुण तो आपने बताया कि चावल की लंबाई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, करीब 6.7 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। पकाने के बाद चावल कम से कम दोगुना लंबाई में बढ़ जाता है और एक कप चावल अगर पकाएं आप तो उसे कम से कम 4.5 कप जो है पका हुआ चावल बनता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है आयतन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ पकाने के बाद चावल का एक एक दाना खिला हुआ होता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है, तो ये गुण जो है बासमती चावल को और भी बहुत सारे प्रोफाइल में, जैसे एमाइलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी मात्रा करीब 22% के आसपास बासमती में होती है और वही होनी चाहिए तभी ये गुणवत्ता आती है। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सभी बासमती चावल खुशबूदार होते हैं, लेकिन सभी खुशबूदार चावल बासमती नहीं होते हैं। खुशबू के साथ साथ बासमती चावल होने के लिए चावल में लंबाई होना विशेष, उस पकाने के बाद चावल की लंबाई में बढ़ोतरी होना और इसके बाद उसके आयतन में वृद्धि होना, चावल का एक दूसरे से चिपकना नहीं बिल्कुल खिला रहना, ये सारे विशेष गुण हैं जिनके साथ हम अगर एक साथ समाहित करते हैं तो उन किस्मों को हम बासमती कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन किस्मों को जब एक निर्धारित जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है तभी हमको बासमती की असली गुणवत्ता प्राप्त होती है।
1: तो वो कौन से क्षेत्र हैं जैसे जहां पर ये उपज ज्यादा होती
0: जी है? तो इसीलिए बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक रेखांकन इसको दिया गया है और इसमें 7 राज्य आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसमें कि जम्मू के 3 जिले हैं, इसके अलावे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड, इन्हीं क्षेत्रों को हम GI मानते हैं और यहाँ की जलवायु बासमती चावल की गुणवत्ता के लिए बहुत विशेष होती है। और उसका एक कारण होता है कि जो चावल पकता है तो उसके अंदर जो खुशबू होती है एक विशेष केमिकल के कारण होती है जिसको हम 2-acetyl-1-pyrrolin बोलते हैं और ये वोलाटाइल कंपाउंड होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, चावल में दाना भर रहा होगा जिस समय, दुधिया दाना होगा, उस समय अगर गर्मी ज्यादा होती है तो ये खुशबू दाने में रहने के बजाय उड़ करके वातावरण में चली जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि जब चावल में दाना भर रहा हो उस समय जो है तापक्रम कम होना चाहिए और वही इन क्षेत्रों में तापक्रम पाया जाता है जो कि चावल में ज्यादा से ज्यादा खुशबू होने के लिए जरूरी होता है।
1: तो क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये फैक्ट भी है कि चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है और खासतौर पर जो हमारी बासमती चावल की किस्म है उसमें भी भारत अग्रणी है, तो इस लक्ष्य तक हम जब पहुंचे हैं

0: और इतनी बड़ी मात्रा में हम चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, क्या इसमें भी जैसे आपने जो रिसर्च की है, जो अनुसंधान किया है, वो भी महत्वपूर्ण रहा है कि हम चावल का इतना बड़ा उत्पादन कर पा रहे हैं, उसका निर्यात कर पा रहे हैं, और कितना निर्यात और उत्पादन हम पूरे विश्व भर में कर पा रहे हैं, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं?
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सभी देशवासियों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है, किसानों के लिए विशेष रूप से, कि भारत आज विश्व का नंबर एक देश है चावल के उत्पादन में। हम करीब 150, 151 मिलियन टन चावल प्रतिवर्ष आज पैदा कर रहे हैं और चावल की खेती करीब 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। दूसरे नंबर पे चाइना है जहाँ पे चावल का उत्पादन 145 मिलियन टन है। और अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में भी भारत पूरे विश्व का पहला राष्ट्र है जो करीब करीब हम 21-22 मिलियन टन चावल का निर्यात कर रहे हैं, जिसमें 6 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात होता है। और इस 6 मिलियन टन बासमती चावल के निर्यात से देश को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, जो करीब 6 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये बासमती किस्में मूलतः जितनी किस्में हैं ये सब पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जहाँ पर पिछले 35 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें कुछ प्रमुख किस्में हैं। उसमें पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1718 है, और इसके अलावे 1847, 1885, 1886, ये सारे किस्मों के नाम हैं। और इन किस्मों का कुल चावल का उत्पादन बासमती का देश में करीब 10 मिलियन टन के आसपास होता है, जिसमें से 6 मिलियन टन का हम निर्यात कर रहे हैं और बाकी चावल देश में प्रयोग में लाया जाता है खाने के लिए। तो इन किस्मों के विकास से बासमती चावल सर्व सुलभ हुआ है। आज किसी भी शादी विवाह पार्टी में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, तो सभी जगह आपको बासमती चावल खाने को मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: और सर्वजन सुलभ हुआ है, और इसका कारण है कि शोध के द्वारा हम लोगों ने अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की हैं।
0: बिल्कुल। तो इसी लाइटर नोट पर भी थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आपकी भी भोजन की रुचि में चावल है, कि आपने चावल को भी अपना एक शोध का हिस्सा बनाया?
1: बहुत ज्यादा पसंद है चावल मुझे।
0: अच्छा।
1: और मैं बासमती, चूंकि हम लोग जब किस्मों का विकास करते हैं तो उस समय भी हजारों पौधे होते हैं, उनके चावल को पका करके उसकी खुशबू को सूंघना, किसमें खुशबू है किसमें नहीं है, उसको खा करके टेस्ट करना, तो वह भी, और उसके साथ साथ चावल हमारा एक विशेष भोजन है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उन क्षेत्रों में चावल नहीं अगर मिला खाने को तो इसका मतलब आपका भोजन पूरा नहीं हुआ, तो चावल बहुत अच्छा लगता है।
0: थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, जो आपकी शिक्षा रही उस पर भी हम लौटना चाहेंगे, बनारस की गलियों से लेकर दिल्ली में पूसा तक का सफर, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा।
1: मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, वहाँ पर बरहट गांव का नाम है हमारा, जहाँ पर जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा गांव में हुई। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए उस समय गांव में स्कूल उतने सुलभ नहीं थे, बहुत पास नहीं होते, तो हम लोगों को करीब करीब 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था और रोज आना पड़ता था। 40 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ती थी प्रतिदिन। अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई 4 वर्ष 1975 से लेकर के 1979 तक जो है, तो ये यात्रा हमारी शुरू की रही। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई कृषि की, हाई स्कूल में भी कृषि, इंटरमीडिएट में भी कृषि की पढ़ाई की। और किसान परिवार में जन्म लेने के कारण खेती के सारे काम जो है शुरू से हम लोग करते रहे। बचपन में हम लोग बड़े हुए खेती को बहुत नज़दीक से देखते हुए, खेती को करते हुए, पशुओं को चारा खिलाना पिलाना, उनको जो है खेत में जुताई करना, बुआई करना, हर तरह का काम कृषि का हम लोग करते थे। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा गांव से पास करने के बाद उसमें हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है, इलाहाबाद बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, और उसमें हमारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 4th स्थान आया था, तो एक गर्व की बात थी पूरे क्षेत्र के लिए। फिर मेरा प्रवेश जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर में मुझे प्रवेश मिला, और वहाँ से बीएससी कृषि, और इसके बाद फिर एमएससी कृषि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विषय हमने चुना। उसमें पढ़ाई करने के बाद फिर मैं पीएचडी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो पूसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मैं आया।

0: और हमारे प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से मैं कहूँ तो पिताजी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में थे, किसान थे, कृषि को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर ऋषि मुनि सिंह, वो उन्होंने भी कृषि की पढ़ाई की थी और 1962 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से वो PhD करके आए थे और जेनेटिक्स में ही PhD उन्होंने किया था। तो एक लक्ष्य हमारे सामने था कि उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तक तो हमको पहुंचना ही चाहिए, तो वो लक्ष्य प्राप्त करना एक हमेशा ध्येय रहा। तो फिर मैं पूसा संस्थान में आया और यहाँ पर PhD करने के बाद फिर मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार शुरू किया। 1994 में वैज्ञानिक के रूप में मैंने यहाँ पर अपनी सर्विस की शुरुआत की और धान पे ही शोध शुरू से किया और फिर वहीं पर मैं सीनियर साइंटिस्ट बना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बना। आनुवंशिकी विभाग जो है, जहाँ पर डॉक्टर स्वामीनाथन भी अध्यक्ष रहे उस विभाग के, पूसा संस्थान में उसका अध्यक्ष बना। फिर बाद में चल करके पूसा संस्थान का निदेशक मैं 2020 में बना और 2024 तक करीब 4.5 वर्ष जो है पूसा संस्थान का निदेशक रहा। लेकिन इस सारी यात्रा के दौरान 35 वर्षों का जो कार्यकाल हमारा रहा पूसा संस्थान में, चावल से हमारा नाता कभी छूटा नहीं, नहीं। शोध में मैं हमेशा जुड़ा रहा और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में पूसा संस्थान में कार्य कर रहा हूँ और चावल के ऊपर ही शोध कर रहा हूँ। एक विशेष बीमारी होती है, उसके निदान के लिए नई किस्मों के विकास पर मैं कार्य कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत आपका व्यापक अनुभव रहा है कृषि विज्ञान के फील्ड में और इसी से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने भारत की खेती में, उपज में क्या बदलाव देखा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक तरफ जैसा कि आपने बताया किसान परिवार से थे, तो व्यवहारिक तौर पर आपने खेती को देखा है और आपने लैब में भी खेती की रिसर्च की है। लैब से लेकर फार्म तक या प्रयोगशाला से खेत तक उन्नत खेती को जाना कितना जरूरी है और आपने क्या कुछ बदलाव देखा है इस मामले में कि जो शोध लैब में हो रहे हैं वो अब किसानों के पास फसलों के रूप में, बीजों के रूप में पहुंच रहे हैं और उसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं?
0: निश्चित रूप से अगर हम भारत की कृषि यात्रा के ऊपर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सन 1950 के दशक में हमारे देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन था। उस समय हमको बाहर से अमेरिका से PL 480 एक स्कीम होती थी, पब्लिक लॉ 480, उस स्कीम के तहत लाल रंग का गेहूं आता था, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती थी, रोटी कड़ी हो जाती थी, खाने में भी स्वाद नहीं होता था और वो प्रति वर्ष करीब 5 से 7 मिलियन टन गेहूं आयात किया जाता था अपने देश की आवश्यकता पूरा करने में और गेहूं का उत्पादन मात्र 12 मिलियन टन के आसपास उस समय होता था। और आज अगर आप देखें तो गेहूं का उत्पादन बढ़कर के 115 मिलियन टन हो गया है और कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 50 मिलियन टन था इस समय 358 मिलियन टन के आसपास हो रहा है। तो सिर्फ हम अपनी आवश्यकता ही नहीं पूरा कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम निर्यात भी कर रहे हैं। चावल के निर्यात के बारे में मैंने बात की, उसी प्रकार से समय समय पर गेहूं का भी निर्यात किया जाता है। तो खाद्यान्न के उत्पादन के माने में अगर हम देखें तो एक तरह से राष्ट्र आत्मनिर्भर हुआ है, तो परिवर्तन बहुत आया है और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है किसानों तक गई है संस्थानों के माध्यम से। अगर देश की कृषि शोध प्रणाली के ऊपर आप देखें तो इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम ICAR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, इसके अंदर 113 संस्थान पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, करीब करीब 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें की 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और कुल मिलाकर के हमारे समझ से करीब 12-13 हजार वैज्ञानिक जो है वो शोध का कार्य कृषि के विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं।
1: तो आज के समय में क्योंकि खेती में पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर और डिजीज को लेकर, जैसे कि आपने रोग रोधी फसलों का जिक्र किया, बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में भी अब हम जैसे उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके अनुभव क्या कहते हैं कि हम किस तरह से जो रोग रोधी फसलें हैं, उपज है, या जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ये कितना जरूरी है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है और क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है और इसमें मुख्य लक्ष्य यह है कि किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जिसमें कि रोग न लगे, या बहुत कम लगे, कीड़े नहीं लगे। अगर हम धान की बात करें तो जैसे धान की जो किस्में हैं उनमें विशेष रूप से पत्ती का झुलसा रोग लगता है, झोंका रोग लगता है जिसको ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं। इसके अलावे ब्राउन स्पॉट एक बीमारी होती है, लीफ फोल्डर कीड़ा लगता है जो पत्ती को लपेट देता है, ब्राउन प्लांट हॉपर कीड़ा लगता है। तो ये सब तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं जो उत्पादन को गिराते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इन बीमारियों और कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए हमको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, उसके चलते हमारा खर्चा भी किसानों का बढ़ता है। और इसीलिए जहां तक बासमती की बात है, मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया। और इन किस्मों में प्रमुख रूप से पूसा बासमती 1637 जिसमें कि झोंका रोग नहीं लगता है, पूसा बासमती 1718 और जिसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, उसी तरह से पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886 इनमें झोंका और झुलसा दोनों रोग नहीं लगते हैं। तो करीब करीब 3,000-4,000 रुपए प्रति एकड़ तो दवाई का खर्चा जो है किसान का वो बच जाता है। अच्छा, जो दवा हम नहीं छिड़कते हैं फसल के ऊपर तो चावल में रासायनिक दवाओं का अवशेष नहीं आता है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एक जो मानक निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा रासायनिक दवाओं का अगर अवशेष पाया गया चावल के अंदर तो हमारी चावल की खेप जो है निरस्त कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शोध किया और हमारी किस्में जो हैं वो एक तरह से रोगरोधी हैं और उसमें बीमारी नहीं लगती है तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जो दूसरा कार्य हम लोगों ने किया है उसमें सूखा रोधी किस्में उनके विकास के ऊपर या ड्राउट टॉलरेंट किस्में हैं, तो कुछ हमारी धान की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि उनके अंदर ड्राउट टॉलरेंस का गुण है लेकिन उनको हमने बासमती मिलाने का काम किया है और कुछ किस्मों का विकास किया है जिनमें कि कम पानी में इनकी खेती हो जाती है। और इसके अलावा और कई क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी हैं। किस्में तो एक हैं, किस्मों के अलावे खेती करने का तरीका हमारा, जैसे धान की हम आमतौर पे जो खेती करते हैं रोपाई विधि से करते हैं। पहले हम पौध लगाते हैं, 25 दिन की नर्सरी जब हो जाती है तो उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में हम रोपाई करते हैं और जिस खेत में रोपाई करते हैं उसमें पानी भर करके खूब जुताई की जाती है गहरी, जिसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। और इसीलिए एक हमेशा चिंता का विषय रहता है कि धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है, चावल उत्पादन में पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए अगर हम धान की सीधी बिजाई करें, और उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी शोध किया है, हमने अभी हाल में ही दो ऐसी किस्में विकसित की हैं, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979, जो कि धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। क्योंकि धान की सीधी बिजाई में होता क्या है कि पानी की तो बहुत बचत होती है 35% के आसपास, उसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो भी घट जाता है 35%, और 4-5 हजार रुपए जो रुपाई का खर्चा आता है उसमें भी बचत होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब इतने फायदे हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा, जब इतने फायदे हैं धान की सीधी बिजाई के तो किसान बड़े पैमाने पे क्यों नहीं अपनाए और क्यों हमको इस बात के ऊपर विशेष जोर अब देना पड़ रहा है। तो जब सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं धान के साथ जो है, और उनसे धान की फसल को नुकसान होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो किस्में दो अभी निकाली जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में हैं और इनके ऊपर खरपतवार नाशी दवा जब हम छिड़कते हैं तो खरपतवार सारे मर जाते हैं लेकिन किस्मों को कोई नुकसान नहीं होता और अच्छी पैदावार धान की सीधी बिजाई में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी ही पैदावार जितनी रोपाई विधि से प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें भी शायद थोड़ी सी हम मेहनत को कम कर सकते हैं। और हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अब क्योंकि हम उन्नत खेती की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र को एक करियर के तौर पर अपनाने वाले युवाओं का रुझान आपको किस तरह से दिख रहा है? जब आप युवा थे उस वक्त हम आप एक युवा के तौर पर अपने करियर को कृषि विज्ञान बनाया, लेकिन आज के युवा में क्या इस फील्ड को लेकर वो रुचि है और उस रुचि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से?
0: कृषि में युवाओं को रोक करके रखना, कृषि के प्रति उनके मन में जागरूकता पैदा करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसीलिए सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे एक कार्यक्रम आर्या है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या, और उसी तरह से मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, माया करके एक कार्यक्रम है। तो इसमें विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है किस प्रकार से कृषि के प्रति हम युवाओं में जागरूकता पैदा करें, और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: इंटेलिजेंस के प्रयोग से, ड्रोन के प्रयोग से, या आपका जो है बिग डेटा है, रोबोटिक्स है, सेटेलाइट का प्रयोग है, सेंसर के प्रयोग से, इन सब सारे नई तकनीकियों के प्रयोग से हम खेती को किस प्रकार से आसान बना सकें, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, और कृषि को हम इस तरह से इसका विकास करें कि युवाओं को ये कार्य करने में अपने मन में एक गर्व की अनुभूति हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका एक ट्रैक्टर है और उसको अगर एयर कंडीशन ट्रैक्टर बना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सब आदमी अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं गांव में भी, कहीं भी सब गाड़ी एयर कंडीशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, विपरीत मौसम में भी लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रैक्टर को चलाने में युवा कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से ड्रोन का प्रयोग जैसे हम खेती के में करते हैं, तो सेंसर से ड्रोन के माध्यम से हमें पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में कहां पर कीड़ा लगा है, कहां पे बीमारी लगी है, तो दूसरी बार जब ड्रोन उड़ेगा दवाई की टंकी लेकर के तो उसी जगह पर जाकर दवा का छिड़काव करेगा।
1: पूरे ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी,
0: हाँ, तो इन सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही ये सब सारी चीजें की जाएंगी, तो उसी जगह पर दवा छिड़काव करेंगे तो आपको दवा की कम मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, पूरे खेत में दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको बीमारी तुरंत नियंत्रित हो जाएगी, फैलेगी भी नहीं, रासायनिक दवाओं का अवशेष भी नहीं आएगा। तो इस तरह से स्मार्ट एग्रीकल्चर की हम बात करें, डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें, इसकी बहुत संभावनाएं हैं, और आगे आने वाले दिनों में विशेष रूप से स्टार्टअप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत जोर दिया गया है कि हम कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया था जो पूरा हो गया है। उसी तरह से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से FPO बना करके हम बहुत सारे किसानों को एक साथ जोड़ करके जब खेती करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो खेती में प्रयोग होने वाली जितनी इकाइयां हैं उनको हम एक साथ खरीदेंगे, जब एक साथ खरीदेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और उसमें पैसा भी कम लगेगा। तो इस तरह से खेती को अगर किसान सब एक साथ जुड़ करके FPO बना के खेती करते हैं तो उनकी जब अपना उत्पाद बेचने के लिए जाएंगे तो पहले से ग्राहक उसके लिए उपलब्ध होंगे और अच्छा दाम उनको मिलेगा। तो इस बात पे भी हमको ध्यान रखना है और इनके प्रयोग से निश्चित रूप से हम खेती में युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे। आजकल देखिए हमारे जितने स्टार्टअप कृषि के क्षेत्र में आते हैं, पूसा संस्थान में हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं स्टार्टअप्स की, और मैं आमतौर पर पाता हूँ कि जो स्टार्टअप्स हमारे बनते हैं, करीब 500-600 से ज्यादा स्टार्टअप्स अभी तक हम लोगों ने शुरू किए हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो या तो IIT किए हुए होते हैं या IIM किए हुए होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, कृषि वाले बच्चे कम आते हैं, और हम लोग अब प्रयास यही कर रहे हैं कि उनके मन में भी किस प्रकार से इस विषय के प्रति जागरूकता पैदा करें और उनको इस दिशा में प्रशिक्षण दिया जाए
1: जी। और वो बच्चे भी, वो विद्यार्थी भी, जो जैसे कि आपने बताया आपका भी व्यवहारिक जीवन तो किसान परिवार से ही था, तो उनके लिए भी संभावनाएं हैं जो गांव से संबंध रखते हैं, खेती में जिनका जीवन बीता है, तो वो अपने जीवन या अपने करियर के तौर पर इस फील्ड को अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी क्षेत्र में जैसे आपने टेक्नोलॉजी की प्रयोग की बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक परियोजना ड्रोन दीदी की चलाई गई थी, तो जिसमें 1,000 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई और उनको ड्रोन पायलट का दर्जा दिया गया, तो उससे एक आत्मसम्मान अपने मन में आता है कि हम ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन के प्रयोग से हम कृषि के विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं, चाहे वो दवा छिड़कना हो या इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का सर्वेलेंस करना हो, मॉनिटरिंग करनी हो।
1: तो निश्चित तौर पर आपके साथ इस बातचीत से हमारे जो युवा हैं वो जरूर प्रेरणा लेंगे, और जिस तरह से आपने बनारस से लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक तक का जो आपका सफर रहा और आपके शोध की यात्रा रही वो सचमुच प्रेरणादायी है, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK सिंह आप इस बातचीत में जुड़े, आपने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे सुनने वालों देखने वालों के साथ साझा किए, और आपने आपके इस अनुभव से जरूर हम सभी को एक बहुत लाभ पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से आकाशवाणी को मुझे यह मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग केदार। आपके साथ तबले पर संगीत की है गोविंदो दास ने।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग केदार। आपके साथ तबले पर संगत की थी गोविंदो दास ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत, चिन्मयी श्रीपदा और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का गीत, संगीत शंकर एहसान और लॉरी का।

अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ों में अभी आपने टू स्टेट्स फिल्म का ये दो गाना सुना। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा था, शंकर एहसान लॉय का संगीत था।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अगला गाना शाहिद माल्या की आवाज में, फिल्म है गुंडे, इरशाद कामिल के बोल, और धुन तैयार की है सोहेल सैन ने।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 होने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
1: सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक राठौर एज डायरेक्टर न्यूज एंड हेड ऑफ आरएनयू आपका खैर मकदम है। तो आज आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे ट्रेडी सफर का। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शफी शौक साहब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आपका खैर मकदम है सर।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया।
1: प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहिए।
2: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खत मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ, पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियाँ मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था, घर से बाहर गांव में गया हूँ तो इन एग्रीकल्चर के लिए मुझे भेजा गया, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का, फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहानात पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सिमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रहीं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रहीं। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
1: जी,
2: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी। आज तक जो टीचर्स मैंने देखे उन सब में वो सबसे अच्छा टीचर था, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एमफिल और पीएचडी में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से एमफिल भी किया पीएचडी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले

0: कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया, पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर। हालांकि कश्मीरी में मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन मेरी किताबें थीं
1: कि राइटिंग्स थी
0: मसलन, इनको और कोई ऑप्शन था ही नहीं क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने ही लिखा था, कश्मीरी ग्रामर मैंने ही लिखा था वगैरह वगैरह, और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये भी मैंने ही लिखा कश्मीरी में, और भी कई किताबें मेरी पहले थी स्टूडेंटशिप के दौरान ही। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मुझे यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीर का पहला लेक्चरर उन दिनों हुआ करता था, तो मुझे रेगुलर लेक्चरशिप मिल गई।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह। मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा। लेकिन रिपब्लिक डे से पहले मुझे होम मिनिस्ट्री से कॉल आ गई, एक दो दोस्त हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा कि खुश रहिए। जब मिला बहुत खुशी हुई, लाजमन खुशी हुई।
1: प्रोफेसर साहब, आपने एक नुक्ता इसमें उबारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जैसे somebody has to file an application या nomination, जैसे आपने कहा कि मैंने कभी इसके लिए इस तरह कोई पहल नहीं की, आपको क्या लगता है as a literary person, as a writer, as an author, as an intellectual, क्या ऐसा सिस्टम सही है या होना चाहिए कि somebody would in any field, in any sector, in medicine, in engineering, in research, in literature, in all areas of, you know, our day-to-day life, governance system, structure जो है, क्या अप्लाई किया जाना चाहिए या खुद सरकार या जो इंस्टीट्यूशंस है कंट्री में उनको खुद देखना चाहिए ऑन द बेस ऑफ वर्क? किस तरह का आप समझते हैं एज एन इंटेलेक्चुअल, एज अ राइटर?
0: मैं समझता हूं कि वन मस्ट नॉट स्ट्रगल हार्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ ऑनररी अवार्ड, ये तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। सो द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स, दे मस्ट टेक द डिसीजन टू चूज द राइट पर्सन।
1: ओके, प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड? तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इन इटसेल्फ इज एन इंस्टिंक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। क्रिएटिविटी बचपन से ही पैदा होती है, प्लेफुलनेस, जो प्लेफुलनेस बचपन की है, बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना वगैरह और फिर से नया बनाना, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो इंस्टिंक्चुअली कुछ काम करने से ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्व है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग। आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जिनका कोई रीडर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि is it satisfying the creator's own instinct to create or not? If it does not, then it need not be made public. लोगों के सामने रखने से पहले खुद ही असेस करना पड़ता है। और ऐसा भी है, बहुत सारे लोग बेनाम ही मर जाते हैं, तो बेनाम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं। तो ये क्रिएटिविटी, अगर इसको हम कहेंगे ये इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी है, राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट फ्रॉम कमिंग इन एग्जिस्टेंस ऑफ होमो सेपियंस, दिस हैज बीन एन इंस्टिंक्ट विद मैन। चाहे वो गारों में रहा, चाहे जंगलों में रहा, रेगिस्तानों में रहा, पुराने जमाने के क्रिएटिव लोगों की चीजें आज भी स्कल्पचर है, उनकी पेंटिंग्स है, उनकी राइटिंग्स हैं, अब भी उनका आनंद लेते हैं हम। लेकिन ये कि ये पूरा ह्यूमन एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी।
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज ए राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाएं लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता। पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने
1: वाला। रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने वाला। तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स हैं, उनमें यही है क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं। अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम
1: विलियम शेक्सपियर को, उनके नाम को नहीं जानते।
0: उसके काम को कौन पढ़ा है? बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जनों ड्रामास हैं, उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक का सीन पढ़ा, कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी, कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा? एज राइटर आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं, किसी जगह रहता हूं। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूँ, फिर अपने मुल्क में रहता हूँ, अपने रियासत में रहता हूँ, और इस दुनिया में रहता हूँ, 21वीं सदी में रहता हूँ। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st century लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ, रिश्ता है वही रिश्ता। उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपने एग्नीज और अपने पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एग्नी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ, तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। उसको और लोग भी समझ सकते हैं कि ये, हाँ ये आज से 200 साल पहले नहीं लिखी जाती ये बात, हाँ ये कोई 14वीं सदी में कोई ऐसा नहीं कहता, या 14वीं सदी में आज की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल हैं, फ्री फ्रॉम टेम्पोरल लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो आज मैं लिखता हूँ वो मेरे आज के ज़माने की तर्जमानी करता है। वो सारा अदब जिसमें ये तर्जमानी ना हो, अपने ज़माने और मकान और अपने माहौल की कोई आकाश नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा अदब नहीं है। ठीक है, हम लिरिसिज्म को पसंद करते हैं, लेकिन खाली लिरिसिज्म, मौसीकी और तरन्नुम की बुनियाद पर अदब की पहचान नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर का अदब आज के दौर का ही होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं हम कोशिश करें, जब भी हम सिंसियरली कुछ लिखें तो उसमें अक्कासी खुद ही आ जाती है। यानी अदब की पहचान ही यही है, रिप्रेजेंटेशन, तर्जुमानी, तर्जुमानी अपने जमाने की, अपने आप की, विद रेफरेंस टू सर्टेन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, वो खुद ही आ जाती है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जानें सोलहवीं सदी में या सत्रहवीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो, सबके सब इस जहानी पानी से चले गए हैं। अगर कुछ रह गया है, हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई कश्मीरियों की, तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे। कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़म पूरी मिलेगी तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया सत्रहवीं सदी या अठारहवीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज, आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज आल्सो विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाईफाई साइंस के बारे में लिखूं, एआई के बारे में लिखूं या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, ज़रूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता। ही हैज़ टू रीड अलॉट, क्योंकि अदब में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहाँ तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको ज़रूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली,
0: इस वक्त मेरे सामने इतने सारे हाई फाई कैमराज लगे हैं तो इनको चलाने वाला
1: प्रोफेशनल होना चाहिए।
0: यानी कि एक तो अदब में दो चीजें हैं, जीनियस जिसको आप खुदादाद कहेंगे या इनबॉर्न कहेंगे या इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी कहेंगे तो, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है इसकी हयत
1: मीन्स
0: यानी फंक्शन। कोई द फॉर्म ऑफ एनीथिंग is not isolated from its function. तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। खुदादाद तो ये कभी नहीं आएगा, ये इंस्टिंक्चुअली किसी को नहीं मिलेगा। इसी तरह लिटरेचर में भी अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज़ नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज़ कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर्स की बात ना करूँ, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम अज़ कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज़ कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, अगर उनका पूरा मुताला हो तो एक शॉर्ट स्टोरी लिख सकता है क्योंकि सीखेगा। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े मास्टर्स रहे हैं शॉर्ट स्टोरी में जिन्होंने ये जॉनर ऑफ लिटरेचर कायम किया, मसलन चेखोव, ओ हेनरे, मापासान, बालजॉक, ऐसे लोगों को जो दूसरे लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो गए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, कश्मीरी में, उनको तो पढ़ना पड़ेगा सीखने के लिए ये हयत कहाँ से आएगी। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है जब किसी का पढ़ा ही नहीं। अगर किसी और जबान का ना पढ़े, कम अज कम अख्तर मोहिद्दीन को पढ़ें,
1: जम्मू कश्मीर की जब बात है किसने, अख्तर मोहिद्दीन साहब की पढ़े,
0: हरी कृष्ण कौल को पढ़े, रतनलाल शांत को पढ़े, ऐसे मास्टर्स को पढ़कर ही सोमनाथ जोशी को पढ़े। जब ऐसे मास्टर्स को पढ़ेंगे हमें आएगा कि अफसाना कैसे लिखते हैं। यही बात गजल में भी है, बहुत सबके सब गजल लिखते हैं, लेकिन ये जाने बगैर, उन उस्तादों का कलाम पढ़ने के बगैर, ईरान से आए है फारसी की गजल गो राइटर्स, किसी न किसी हाफिज किसी को पढ़ें या गालिब को पढ़ें, अगर गालिब को पढ़ा ही नहीं है तो गजल कैसे लिखेंगे, ये रदीफ काफिया इस्तेमाल कैसे करेंगे, वजन अवजान का शऊर कैसे पैदा करेंगे। ये जो तहजीब है अदब की वो उधार लेनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है। ये इंसलाकी चीज़ है, अक्वायर्ड चीज़ है, जो मेहनत से एक्वायर की जाती है। इसलिए दोनों चीज़ें सही हैं, एक तो जो तजुर्बा है वो अपनी ज़ात का हो, लेकिन हयत का मामला जब तक है इसका प्रेजेंटेबल सूरत वो प्रेजेंटेबल सूरत सीखनी पड़ती है। अगर एक मामले में कमजोर रहा, मसलन हमारे गजल गो कुछ बहुत सारे हैं जो सिर्फ रदीफ काफिया को जानते हैं, अवजान की तमीज रखते हैं, लेकिन मवाद कुछ नहीं, उनको कहने के लिए कुछ नहीं, फिर भी गजल बनाते हैं। अगर उसमें हमारे दौर की कोई रिफ्लेक्शन नहीं, अगले जमाने में किसी को याद करेंगे कि हम देखना चाहिए 21वीं सदी की इस कैसा इंसान था, सिर्फ इश्क आशिकी की बातें करने वाले से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ मूसी की बुनियाद पर कुछ नहीं मिलेगा इसको। इसलिए न सिर्फ रवायत सीखना पड़ेगा हयात, और अपने जमाने से हासिल करना होगा। वो तभी मुमकिन है जब हम अमली तौर पर जिंदगी में शामिल हों। हमारी शायरी के लिए, अदब के लिए जरूरी है कि आई एम देयर फॉर आई, इसका रिवर्स एग्जिस्टेंशियली, मैं हूँ इसीलिए सोचता हूँ, ये नहीं कि मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। अगर वो तो सिर्फ थॉट बन गया। अगर हम कहेंगे मैं हूँ, आई एग्जिस्ट देयर फॉर आई थिंक, आई एम देयर फॉर आई थिंक, तब रिवर्स हो जाता है कि हम इंसान की सतह पर बात कर पाते हैं।
1: इस तरह समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं, दे कुड बी द गुड राइटर्स?
0: नो, नॉट नेसेसरली। आई हैव सो मेनी कलीग्स ऑफ माइन हु आर गुड टीचर, हु नो बेटर इंग्लिश देन मी, ज्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है।
1: जिस भी लैंग्वेज में रीडर है, उस रीडर के जो मेंटल एंड इमोशनल होराइजंस हैं, मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, किस तरह से आप इसको फील करते हैं? एक राइटर किस तरह से इसको बेस्ट तरीके से कर,
0: sincere to my own experience that I want to deliver something, transport something from my inner being to others, the listener or the reader, and then I become a part of the community. I cannot isolate myself from the community. Community ki jo problems hain, issues hain, musibatein hain, khushiyan hain, gham hain, anxieties hain, jis mahol mein hum rehte hain, kaun adib, koi shayar, koi fiction writer aisa nahi ho sakta. Literature likhna to produce product mein do cheeze hain. Ek to iska matter hai, dusra iska commitment hai. Ye kis purpose ke liye likha hai? Isiliye quality कंट्रोल जब हर किसी बात में है, अगर इस माइक्रोफोन का क्वालिटी कंट्रोल है, इस शीशे के गिलास का क्वालिटी कंट्रोल है, पानी का क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो प्रोडक्ट हम लफ्जों में पेश
1: क्रिएट, यू राइट एंड यू
0: हैज टू बी सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ स्क्रूटनी। इफ इट पासेस ऑल द टेस्ट्स ऑफ स्क्रूटनी देन इट इज जेन्युइन लिटरेचर, इफ इट डज नॉट देन इट इज नॉट गुड लिटरेचर। व्हेन वी कीप दिस थिंग इन माइंड एंड राइट, we are committed to our society, we are committed to our contemporary reality, contemporary world in general, and humanity in at large. As you said, it has to be very very humane. Do humane to hona hi chahiye. हम किसी जंगल में तो नहीं रहते, हम किसी रेगिस्तान में अलग से, किसी जजीरे में अलग तो नहीं रहते, हम लोगों में बसते हैं, तो उन लोगों की बात खुद ही आ जाती है जब मैं अपनी बात कहूँ।
1: As a literature, as a author, as a writer, how do you navigate the barriers of the language, culture or personal life, jo hai family life hai, global level ko absorb karke uske baad aap apni creativity ko nikhar sakte hain, hone up kar sakte hain, sheen and shine de sakte hain, isko aap kaise navigate karte hain as an author, how you have been doing it?
0: ki mujhe 5-6 zabanon ka ilm hai, angrezi, like? kashmiri, urdu, hindi, even persian,
1: okay,
0: to arabic to hai, संस्कृत, इन सब को मैं टाइप भी करता हूँ, लिखता हूँ और कंपोजिंग भी करता हूँ खुद ही अपने कंप्यूटर पर। ये पहले मेरे लिए एडवांटेजेस रहा, इस वजह से मुझे कई जबानों के अदब का मुताला करना पड़ा। इसके साथ जो ट्रांसलेशन वर्क है,
1: yes,
0: जो बाकी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, तो मैं भी इसमें शरीक हो गया। मैंने इंटर लैंग्वेज एंड इंट्रो लैंग्वेज ट्रांसलेशन किए हैं। मसलन मैं फारसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने मिर्जा गालिब की बेहतरीन गजलों का अंग्रेजी तर्जुमा किया,
1: okay,
0: the best of मिर्जा गालिब is Persian poetry, मेरी किताब से भी बहुत चली और बहुत पसंद की गई। इसी तरह मैं कभी उर्दू की बेस्ट सूफियाना पोएट्री को कश्मीरी में डाला, इसी तरह ऐसे ही काम करता रहा, और अपनी शायरी और अफसाने लिखने के साथ साथ।
1: Professor Ashok Saab, the amount of time, that can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, years of workings, you know, since childhood, you know, successful in navigating challenges, number one. Number two, how the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children. Up to the 12th grade, I have been their tutor, very dedicated tutor. मैं आज भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा पढ़ा सकता हूँ.
1: सो मच ऑफ वैरायटी इन योर लाइफ.
0: मुझे एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उन दिनों इनविटेशन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था. तो मेरे बच्चे बहुत पढ़े हैं. मेरा बेटा डॉक्टर रिजवान रोमी इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के सबसे वर्ल्ड फेमस ऑनकोलॉजिस्ट हैं. मेरी बेटी इस वक्त कनाडा में है, वो भी साइंस फील्ड में ही एक्सेल कर गई है. ये मुझे खुशी देता है कि चलिए मुझे तन्हाई मिली.
1: डू यू फील दैट दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन सोसाइटी?
0: दैट हैज बीन माय एम दैट दे शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे. Not like me playing with words and making things. And let them do something, contribute to humanity. Oncology to agar kuch kar paaye to
1: exactly.
0: Agar ek hi aadmi ko bacha paaye, mera beta to badi baat hai. मुझसे ज्यादा बड़ा काम किया है उसने हीमाटोलॉजी में. उसने वो कैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है और उसने हेडवेज की है. वो रोज एक मुल्क में दूसरे मुल्क में रहता है और वहाँ मुझे पिक्चर्स भेजता है. मुझे खुशी मिलती है.
1: फ्रॉम ऑल अक्रॉस लाइफ जितने भी फील्ड हैं दुनिया में गवर्नेंस के, एक पॉलिटिशियन आता है, एक MLA आता है, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर. तो आप एज टीचर किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में? आप बहुत हद तक मुतमईन हैं?
0: मैं मुतमईन हूँ. मैंने पहले अर्ज किया कि ये जरूरी नहीं कि मुझे बहुत सारे पढ़ने वाले मिले, लेकिन जो कश्मीरी पढ़ते हैं कॉलेजों स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा शफी शो. क्यों? डिक्शनरी किसी और ने नहीं लिखी है तो मेरी डिक्शनरी उनको लेनी ही पड़ेगी. हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर किसी ने नहीं लिखी है तो मैंने ही लिखी है, उनको लेनी है कॉपी. उनकी 31 एडिशन आज तक आ गए हैं 1978 से आज तक. हर साल मैं इसको रिवाइज करता. पहला ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा सबको. इसी तरह मैं खुश हूँ हजारों लोगों जो मेरी किताबें खरीदें, उनके साथ मेरा रब्ता न हो. वो
1: दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
0: मैं उनको जानता हूँ जिनको मैंने डायरेक्टली पढ़ाया है. मैं चाहता हूँ कि उनमें से भी कुछ ऐसे मेहनत करने वाले पैदा हो जाएं, ऐसे काम करें. करने को तो बहुत कुछ है. अभी हर कोई काम दूसरे नए काम की एक फंडामेंटल बुनियाद बनता है. अगर मेरी किताब नई किताब बिना बने तो मेरे लिए खुशी की बात होगी.
1: प्रोफेसर शोक साहब, किस तरह से आप चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जेंड के लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस, उनको किस तरह से आगे की तरफ देखकर क्या काम किया जाना चाहिए?
0: सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत जरूरी है. एक तो हमारा जो रिवायत, जो हमारी ट्रेडिशन है किसी भी फॉर्म में, कश्मीरी शायरी में, नसर में वगैरह, उसको प्रिजर्व किया जाए, रिप्रिंट किया जाए. हैरत की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े शौरा का कलाम इस वक्त अवेलेबल ही नहीं मार्केट में. हमारे मीरास को बचाया जाए.
1: प्रोफेसर शफी शौक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस.
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: सो डियर लिसनर्स, विद दिस द स्पेशल प्रोग्राम विद पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक कंक्लूड्स हियर. खुदा हाफिज.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत. इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर. इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. पता है podcast.airnews@gmail.com.
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी.

0: स्वागत है महनू आप सभी का। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना कार्यक्रम घर संसार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी प्रीति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। हमारी सभी बहनें स्वस्थ होंगी, खुश होंगी, इसी कामना के साथ चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों, चेहरे की मुस्कान किसी की भी हो कितनी प्यारी लगती है ना, और जब बात बच्चों की हो तो ये मुस्कान और भी प्यारी लगती है। मैंने बातचीत के इसी क्रम में आइए सुनते हैं आज के बच्चों की बदलती सोच और व्यवहार को कैसे समझें विषय पर श्रीमती किरण प्रसाद शिक्षिका बागेश्वर से प्रीति जाटव की क्षेत्र संकलित बातचीत।
1: मैंने समय बदल रहा है और समय के साथ बदल रही है बच्चों की दुनिया भी। जी हाँ बहनों, आज का बच्चा पहले से ज्यादा समझदार है, अधिक सवाल करता है, अपने विचार खुलकर रखता है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं वो जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। पहले पहले बच्चे मिट्टी में खेलकर बड़े होते थे, आपने देखा होगा ना, अब स्क्रीन के साथ बड़े हो रहे हैं। पहले परिवार बच्चों का संसार था, अब सोशल मीडिया उनकी सोच तय करता है। मैंने ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में आज के बच्चों को समझ पा रहे हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को समझने के लिए आज हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं एक अनुभवी शिक्षिका श्रीमती किरण प्रसाद। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम घर संसार में।
2: धन्यवाद मैम।
1: मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के बच्चों में सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या दिखाई देता है?
2: वर्तमान समय में जो बच्चों में बदलाव हो रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव उनकी सोच और व्यवहार में हो रहा है। अगर हम तुलना भी करें पहले के बच्चों में और अब के बच्चों में, तो जो पहले के बच्चे थे वो काफी शर्मीले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो बच्चे हैं काफी खुले विचारों के और बहुत एक्टिव हो गए हैं, और जो है इन सब चीजों में उनका सहयोग सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया, जिसकी वजह से वो आजकल बहुत एक्टिव हो रहे हैं
1: जी।
2: लेकिन इसके साथ साथ में मैम, इनके अंदर क्या है ना कि ये मीडिया से कनेक्ट तो हो जा रहे हैं, लोगों से मिल तो जा रहे हैं, वहाँ उनके दोस्त बन जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन सा रहता है। उनको ऐसा फील होता है कि शायद हमारी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, या हमको जो हमारे फैमिली है, हमारी परिवार है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैम कि आजकल के जो बच्चे हैं, सवाल करने के साथ साथ में मैम वो जो अपनी राय भी रखते हैं उस बात पर, और इसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
1: मैम, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों के व्यवहार को बदल रहे हैं?
2: हाँ, जो मोबाइल है और सोशल मीडिया है वो बच्चों के व्यवहार को बहुत हद तक बदल रहा है। आज आप अगर देखेंगे एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 के पास फोन है, और बच्चा क्या है, खाना खाते समय भी उसे स्क्रॉल कर रहा है, हालांकि पढ़ाई करते समय भी उसे स्क्रॉल कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन सब चीजों से बहुत जो है प्रभावित हो रहा है। इस पर पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना होगा कि भाई हम बच्चे को क्या करें, उसे अपने साथ बिठाएं, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ पढ़ाई करें, उसकी पूरी दिनचर्या को पूछे। और ये ऐसे बहुत केसेस भी आ रहे हैं कि बच्चे क्या हो रहे हैं, मोबाइल की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, और उनमें क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है, और काफी गुस्सा भी करने लग जाते हैं।
1: और मैम, कहीं ना कहीं बच्चे जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं।
2: तो सबसे पहले यही चीज उन्हें मैम करते हैं कि अगर एक बच्चा वो इतना सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता
1: जी,
2: वो भी किसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा। वो खुद ही तुलना करने लग जाते हैं, या तो कोई जैसे आजकल जमाना है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का, छोटी छोटी वीडियो का, तो बच्चे बनाकर डालते हैं। अब एक बच्चे का क्या हुआ कि हाँ भाई चल गया, उसके लाइक मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो उनको भी ये फील होता है कि भाई अगर उसका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो खुद कहीं ना कुंठा की भावना आ जाती है उनके अंदर कि मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को बिल्कुल ही आप टेक्नोलॉजी से, मोबाइल से दूर रखिए, ये समय ही ऐसा है कि आप इससे दूर नहीं रह सकते। पहले जमाने में फोन नहीं था, हम अदर चीज से अपना टाइम स्पेंड करते थे और हमें इतनी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। जैसे आप आजकल एजुकेशन को ही देखिए कि बच्चे जो है मोबाइल से भी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको ई कॉमर्स या ई बुक्स मिल जा रही हैं, ठीक है। और पहले का समय ये था कि बच्चे सिर्फ किताब से ही पढ़ते थे और टीचर से पढ़ते थे। तो टेक्नोलॉजी मैम क्या है, अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए तब।
1: और मैम, देखा जाता है ना अक्सर कि माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं, उन पे बहुत दबाव बनाते हैं, माता पिता, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बच्चों के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाती हैं।
2: देखिए मैम, हर बच्चे की एक अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चा समान नहीं।

0: रहा है। तो कभी भी पेरेंट्स को किसी बच्चे से अपने बच्चे की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। कई
1: जी
0: बार पेरेंट्स कहते हैं कि देखो भाई वो तुम्हारा दोस्त, उसके इतने नंबर आए हैं, ठीक है, उसने अपने स्कूल में टॉप किया है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये आप भी देखते होंगे कि हाँ, इस टाइप से पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: देखिए कोई बच्चा क्या है, क्रिकेट में बहुत अच्छा होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्रिकेट भी अच्छा खेले, पढ़ाई भी अच्छी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बच्चे का कोमल मन होता है, उसको समझना है कि हाँ भाई हमारा बच्चा किस प्रकार का है। अगर बच्चे को खेलने में इंटरेस्ट है, उसे गेम्स की तरफ भेजिए, कविताएं करने में है तो उसे उसका सहयोग दीजिए, संगीत में रुचि है उसकी तो उसमें सहयोग करिए, डांस में है तो उसमें करिए। एक बच्चा सभी फील्ड में परफेक्ट नहीं हो सकता।
1: और कहते हैं कि बच्चों को महंगे खिलौनों की नहीं बल्कि समय और अपनेपन की जरूरत होती है।
0: जी
1: मैम, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों की मानसिक स्थिति को कैसे समझती हैं?
0: हम जो स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम बच्चों को पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। हम उनके गुरु हैं, हम उनके मार्गदर्शक हैं, हम उनके दोस्त भी हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो अपनी सरसरी निगाहों से सबसे पहले बच्चों के चेहरों को देखते हैं, तो
1: हाँ
0: उसमें क्या होता है कि हमें पता भी चल जाता है कि हाँ बच्चे के चेहरे से कि आज बच्चा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे के साथ में। क्योंकि एक खिलता चेहरा, हंसता चेहरा, मासूम चेहरा आपको मुरझाया हुआ दिखाई देगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि बच्चा आज क्या है, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है।
1: जी
0: तो टीचर्स क्या करते हैं मैम, कि उनके व्यवहार को देखते हैं कि हम भी बच्चे में ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही होंगी। तो वो भी क्या करते हैं कि अपना उनको भावात्मक रूप से पूछना, उनके पास जाना, पूछना कि भाई आपको क्या समस्या है
1: जी
0: जो आप इतने उदास हो,
1: जी
0: उनसे प्यार से बात करना, फ्रेंडली रहना। ये नहीं कि हाँ वो बच्चा बैठा है तो तुम क्यों बैठे हो, कॉपी निकालो, काम करो, ये वो। तो ये चीजें भी थोड़ा हटकर टीचर क्या करता है, एक इमोशनल और सपोर्टिव रहता है।
1: और देखिए ना मैम, कहते भी हैं कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों के अंकों से पहले उसकी भावनाओं को पढ़े।
0: जी बिल्कुल
1: मैम, आज
0: मैम,
1: के बच्चों में संवेदनशीलता कम हो रही है या बढ़ रही है?
0: देखिए इसमें कि बच्चे आज के समय में भी उतने ही संवेदनशील हैं जितना कि बच्चे पहले हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है मैम, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका है ना, वो बदल गया है। वो क्या करते हैं, अपनी हर बात को रखते हैं और अपने आप को क्या है, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन क्या होता है मैम, वो ना दिखाते तो है ऐसे, लेकिन अंदर से क्या होते हैं, वो कमजोर होते हैं। वो छोटी छोटी बातों से क्या हो जाते हैं, एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैम, अगर उन्हें प्यार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और सही दिशा दी जाए तो वो बच्चे बहुत समझदार और दयालु हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। देखिए ना मैम, जो बच्चा होता है वो अपना अधिकतर समय स्कूल में ही व्यतीत करता है, तो क्या
0: जी
1: स्कूल बच्चों के व्यवहार को सुधारने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं?
0: बिल्कुल मैम, आपने पहली लाइन जो बोली कि बच्चा क्या होता है अपना ज्यादातर समय स्कूल में व्यतीत कर रहा है,
1: जी
0: तो उनके व्यवहार को सुधारने में या उनके व्यवहार को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है मैम स्कूल की ना, स्कूल की, वहाँ के टीचरों की, वहाँ के माहौल की और वहाँ के बच्चों की। वहाँ पर उसका पूरा, मतलब आप समझिए कि पूरा व्यक्तित्व तो निखर कर आ जाता है। जब वो स्कूल से पास आउट होकर जाता है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा जो इस स्कूल से पढ़कर आया है, आप उसके बातचीत से आप उसके पूरे व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं।
1: जी
0: क्योंकि मैम स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। उन्हें अपने जीवन को कैसे जीना है ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो उसे कई बच्चों का साथ मिलता है मैम, तो बच्चे में क्या होती है ना, एक धीरे धीरे टीम भावना में रहकर काम करने की क्या है, वहाँ शिक्षा मिल जाती है कि मुझे अन्य बच्चों के साथ कैसे काम करना है, कैसा व्यवहार करना है। वो वहीं पर उनके साथ खाना भी खाता है, खेलता भी है, उनसे बातें भी करता है, हंसता है, रोता है, उसकी सारी एक्टिविटी समझिए वहाँ पर उसकी होती है
1: जी
0: और वो पूरा अपना व्यवहारिक ज्ञान लेकर उस स्कूल से निकलता है।
1: और मैम, शिक्षा की अच्छी बातें भी कई बार बच्चों की क्या होता है ना, जिंदगी बदल देती हैं।
0: जी बिल्कुल
1: मैम, देखिए ना, आज के बच्चों को समझने के लिए हम बड़ों को, चाहे माता पिता हो चाहे
0: जी
1: कोई भी हो, तो अपने में क्या बदलाव करना चाहिए?
0: देखिए आजकल के बच्चे बाहर से बहुत स्ट्रोंग दिखते हैं, लेकिन भावात्मक रूप से क्या होते हैं,
1: जी
0: कमजोर होते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े हैं तो हमारे भी कुछ क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं बच्चों को लेकर। अब हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बात बात पर आदेश दें, उपदेश दें कि आप यहाँ जाओ, ये चीज करो। तो ये सब ना करके हमें क्या है, उनके साथ एक दोस्त के रूप में हमें व्यवहार करना चाहिए। मैंने
1: जी
0: जैसे पहले कहा कि टीचर क्या होता है, एक सिर्फ एक टीचर ही नहीं होता है, शिक्षक ही नहीं होता है, वो क्या होता है, उसका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। बच्चे अपनी बहुत सी समस्याएं अपने माता पिता से ना कहकर अपने टीचर से बताते हैं। आजकल क्या है, समय क्या है, बदल रहा है। तो जो हमारे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनको भी बच्चों के साथ समय के अनुसार क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए,
1: बिल्कुल मैम।
0: उनकी बातें सुननी चाहिए, उसकी राय को महत्व देना चाहिए।
1: और देखिए ना मैम, बच्चों को हर समय परफेक्ट बनने की सीख दी जाती है, तो ये कितना सही है।
0: देखिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, गलतियां सभी से होती हैं। और मतलब बच्चों को हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चों से गलती ही नहीं होगी, तो बच्चे हैं तो ये तो है कि स्वाभाविक है कि भाई बच्चा है गलती करेगा। और अगर बच्चे से गलती होती है तो उसको ये नहीं कि डांटे मारे, आप उसको समझाएं कि गलती भी क्या है भाई, आपकी जीवन का हिस्सा है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप कोशिश करो कि अगले समय वो सही हो जाए, आप अपनी गलतियों से सीखो।
1: जी मैम, आज के बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है।
0: मैम आज के बच्चों में, या हम पहले के भी बच्चों की बात करें, तो उनके आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप बिना डांटे बिना डराए उनकी जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, छोटे छोटे प्रयास होते हैं, उनकी आपको तारीफ करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, जब आप चाहे वो बच्चे हो गए या फिर बड़े हो गए, जब आप उनकी कोशिशों की तारीफ करते हैं तो अंदर से उन्हें क्या मिलता है, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है।
1: मैम, अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी माता पिता और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी।
0: मैम मैं बस अंत में इतना कहना चाहूंगी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको समझने की, उनको प्यार करने की, उनकी भावनाओं की कदर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय बदल रहा है, आपको भी बदलना है, बच्चों को समझना है। बचपन है, बच्चों की बातें हो रही हैं तो
1: जी
0: इसमें कुछ पंक्तियां हैं मैं बोलना चाहूंगी। मैम एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी बाहर जाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था, एक बचपन का जमाना था। तो ये बचपन बार बार वापस नहीं आता है, इसको एंजॉय करिए और अपने बच्चों को भी इसे खुलकर जीने दीजिए।
1: मैम, कार्यक्रम के माध्यम से आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोता सखियों को दी। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: मैंने अभी आप सुन रही थी आज के बच्चों की बदलती सोच और व्यवहार को कैसे समझे विषय पर श्रीमती किरण प्रसाद, शिक्षिका बागेश्वर से की गई बातचीत। और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये गीत।

स्वागत है बहनों, एक बार फिर से आप सभी का। बहनों, आज के समय में हर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है ना? इसलिए सरकार ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। बहनों, अल्पसंख्यकों हेतु योजना के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के विषय में। सभी शहरों अर्ध शहरों में ये योजना 1 दिसंबर 1997 से लागू की गई। बहनों, इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबों को स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत उनको वित्तीय सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत हो सकें। बहनों, इस योजना का लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप BPL कार्ड की श्रेणी में आते हों और भारतीय नागरिक हों, और इसके लिए आपको अपने क्षेत्र की नगर पालिका या नगर पंचायत से संपर्क कर सकती हैं। तो इस योजना का लाभ उठाकर खुद का व्यवसाय शुरू करें, आत्मनिर्भर बने और हमेशा खुश रहें। और इस समय सुनिए ये प्यारा सा गीत।

मैनू इसी गीत के साथ समय हो गया है कार्यक्रम के समापन का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। मैनू हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी रेडियो सखी प्रीति जाटव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी

0: और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्रता से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक की मई के अंतिम सप्ताह में अलग अलग तिथियों में होने वाली CUET UG परीक्षा अब एक निर्धारित तारीख में नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

सी ने गुरुवार 28 मई 2026 को होने वाली CUET परीक्षा बकरीद के चलते स्थगित कर दी है। इस संबंध में NTA ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है। आज गंगा दशहरा पर्व है। हरिद्वार, हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुट रही है। प्रशासन ने गंगा घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं गंगा दशहरा पर्व पर उत्तरकाशी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के मणिकर्णिका घाट सहित विभिन्न घाटों और कस्बों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान FRI आज से पर्यटकों और आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा।

0: मां गंगा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान FRI आज से पर्यटकों और आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसे 4 महीने पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। संस्थान ने सामान्य प्रवेश और संग्रहालय के लिए शुल्क में वृद्धि भी की है। पैदल भारतीय नागरिकों के लिए अब प्रवेश शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। संग्रहालय में प्रवेश के लिए उन्हें ₹150 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क ₹1,000 रखा गया है। संग्रहालय में जाने के लिए विदेशी नागरिकों को ₹1,500 अतिरिक्त चुकाने होंगे। वाहन पार्किंग के लिए भी शुल्क लागू होगा। स्कूटर और बाइक के लिए ₹50, निजी कार या टैक्सी के लिए ₹150 शुल्क लिया जाएगा। ऑटो रिक्शा का पार्किंग शुल्क ₹100 और बस या ट्रक का ₹300 होगा। FRI की प्रभारी निदेशक ऋचा मिश्रा ने बताया कि पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। संस्थान को 16 जनवरी 2026 को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बंद किया गया था। ये बंद अगले आदेश तक के लिए था, जो अब समाप्त हो गया है। दून विश्वविद्यालय के 75 छात्रों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। इस उपलब्धि पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि छात्रों का सफल प्लेसमेंट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग छात्रों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय लंबे समय से परिणाम आधारित शिक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसके तहत न केवल सैद्धांतिक शिक्षा बल्कि औद्योगिक तत्परता, प्रशिक्षण गतिविधियों, व्यावसायिक कौशल, व्यक्तित्व विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। श्री कोश्यारी को यह पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके दीर्घ योगदान के लिए दिया जा रहा है। सम्मान पाने पर श्री कोश्यारी ने कहा कि समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना जीवन का उद्देश्य है और वे निरंतर यह कार्य करते रहेंगे। सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डो में जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि टिहरी के जौनपुर और हरिद्वार की लंढौर सहकारी समिति में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दोनों समितियों में 68 वर्ष बाद पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 39 सहकारी समितियों में हुए चुनावों में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आज अपराह्न 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपकी मुलाकात स्वामी ब्रह्मदेव महाराज से करवा रहे हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। स्वामी जी के प्रयासों से हजारों दिव्यांगों का जीवन रोशन हुआ है। आप पिछले लगभग 5 दशकों से श्री गंगानगर में जगदम्बा अंध विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। श्रोताओं जानते हैं समाज सेवा को समर्पित स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में। स्वामी जी, सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी शिक्षा दीक्षा और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ?
3: मैं

0: छठी क्लास तक तो गांव में ही पढ़ा हूँ, ग्रामीण हमारा जीवन का प्रारंभ है। उसके बाद हमारा गुरुजी से संबंध जुड़ा, उनके सत्संग के माध्यम से हम अपने गुरुजी से प्रभावित होकर के संतों के शरण में चले गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें पढ़ने लगा दिया, तो हमारी शिक्षा सारी अमृतसर की है। वहाँ अखाड़ा संगलवाला है, जहाँ रह करके हमने दुर्गयाड़ा मंदिर में जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं बैठ करके हमने प्रभाकर की संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वहीं हमने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए। 1960 में मैं गुरुजी के चरणों में चला गया था। 1972 तक पढ़ने के बाद गुरुजी के पास सेवा की। 72 में गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी, तो हम पटियाला चले गए। पटियाला सत्संग के माध्यम से वहाँ एक आश्रम बढ़ गया। तो जब मैं अमृतसर में पढ़ता था वहाँ हमारे संस्कृत विद्यालय के साथ एक छोटा सा अंध विद्यालय भी था, तो मैं अक्सर उसमें जाया करता था। तो मेरे मन में कई बार आता था ये सबसे बड़ी तो ये सेवा है, बाकी तो सबको लोग पढ़ा लेते हैं, तो जिसको दिखते ही नहीं उसको पढ़ाना, उनको किताबें ऐसे पढ़ते देख करके मेरे बड़ी उत्सुकता थी कि प्रभु ने कभी कृपा की तो अपने अंध विद्यालय में। वो मन में विचार हमारे बैठा हुआ, तो चलते चलते गुरुजी की आज्ञा से पटियाला चले गए, वहाँ भी आश्रम बन गया। तो 73 में हरिद्वार में भी आश्रम बन गया। उसके बाद हम इधर आए तो समाणा पटियाला धूरी खन्ना इधर सत्संग करते रहे, तो अचानक हमें गंगानगर के दो व्यक्ति हरिद्वार में मिले, वो हमें यहाँ ले 76 में। तो हनुमान जी का मंदिर है, वो भी निर्माणाधीन था, वहाँ दो दिन सत्संग करके हम चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अगले साल बुलाया, तो 8-10 दिन जगह सत्संग हुआ, तो वो कहने लगे जी हमारा बंदर पूरा करवाओ। 78 तक वो बंदर कंप्लीट हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद एक यज्ञ करने के बाद हम चले गए। जब दोबारा फिर आए अगले साल एक दिन के लिए, तब ये जो नया चक है जिसके बाद करचैल चौक कहते हैं, ये नया चक था। हम यहाँ 78 में आ गए। ये नए चक के एक खुर्जाराम जी कुलचाणिया जो थे उनकी ये जमीन है, 1 बीघा जमीन है। उन्होंने माता का मंदिर बढ़ाया हुआ था, उसका नाम था जगदम्बा माता मंदिर, छोटा सा मंदिर, 1 बीघा उसके नाम जमीन। तो ये हमारे पास हनुमान मंदिर में चले गए जी। हमारा मंदिर तो बन गया, वहाँ पूजा तो होती नहीं, तो हमें लगता है कि पूजा ना हो तो अपराध है, आप उसमें कुछ बनाना चाहते तो बनाओ। वहां से फिर पैदल चल करके गाँव के बाद जब इस जगह को देखा, सड़क के किनारे वहाँ दीव के पेड़ लगे हुए, छोटा सा मंदिर है, तो एकदम माता के दर्शन करते मन में विचार आया कि जो अपने अंध विद्यालय है ना वो यहाँ पूरा हो सकता, शहर से दूर है, चारों तरफ खेत है, कल को जगह की जरूरत होती है जगह भी मिल सकती है। तो 13 दिसंबर 1980 को अंध विद्यालय की नींव हमारे गुरुदेव संत बाबा कृदयाल दास जी महाराज जी के कर कमलों से रख दी गई। 81 में 6 कमरे हमने तैयार कर लिए थे, एक बच्चे से जिसका नाम राजकुमार था और एक हमारे थे अध्यापक जिसका नाम था अमरनाथ गर्ग, दोनों से स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए, हम भी संघर्ष करते गए, सत्संग होता रहा, लोगों की भी रुचि बढ़ती गई। फिर गांव से जहां पता चलता था ब्लाइंड बच्चा लेने के लिए जाते थे, बड़ी समस्या आती थी उनको समझाने की, उनको समझा बुझा के गर्ग साहब को साथ लेके जाना, पढ़ के दिखाना, फिर बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
1: स्वामी जी, इस विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण और स्वावलंबन बनाने के लिए किस प्रकार सिखाते हैं ताकि वो खुद स्वावलंबी बन जाएं?
0: ये विद्यालय जब शुरू हो गया इनको तो हम बनाने सिखाते थे, कुर्सियां बनाना, बैग बनाना, बाकी खेल कूद संगीत की शिक्षा, ये तो इन बच्चों के जीवन यापन के लिए थे, आगे इनको सर्विस भी मिल सके। और साथ ही फिर 83 में डेफ बच्चों के लिए शुरू हो गया, अब उसमें बच्चे आने लगे। उन बच्चों के लिए शिक्षा तो थी ही साइन लैंग्वेज से, साथ के साथ लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ब्यूटी पार्लर ये काम सिखाना, बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिलवाना, फिर बच्चों को धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया, पहले हम टाइप सिखाते थे फिर कंप्यूटर सिखाने लग गए, तो बच्चों के लिए फिर प्रेस लगाई दूसरी कंपोजिंग वाली, फिर हमने ऑटोमेटिक प्रेस लगाई ताकि बच्चे आगे पढ़ लिख करके कहीं रोजगार प्राप्त कर सके। ये दोनों का डेफ के लिए अलग और ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग दोनों तरफ चलता रहा।
1: स्वामी जी, अब तक की यात्रा में कितने बच्चे लाभान्वित हो सके हैं और भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
0: इसके बाद फिर हमने शुरू किया था नेत्र चिकित्सालय के, जो ब्लाइंड बच्चे ब्लाइंड हो चुके हैं उनको तो शिक्षित करो, जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है वृद्धों में भी और कई जन्मजात बच्चों के भी कैटरेक्ट होता है सफेद मोती है, उससे भी बच्चा ब्लाइंड हो जाता अगर इलाज ना हो। तो फिर आई हॉस्पिटल की स्थापना की, लोगों के सहयोग से आई हॉस्पिटल बढ़ गया। उस आई हॉस्पिटल में जिसका पढ़ाना तो पढ़ाए, जिसका इलाज नहीं तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करते, ताकि जो वृद्ध अवस्था में ब्लाइंडनेस आती है वो

0: अटेंडेंस का कंट्रोल होता रहे।
1: स्वामी जी, भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
0: बच्चों के लिए हमने जो यहाँ प्रयास किए, कुछ बच्चे तो हमने डेफ बच्चे पहलवान बनाए, ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट में, जूडो में, खेलों में दे करके नेशनल लेवल तक ये भी बच्चे जाते रहे। फिर हमारे पास मिलिट्री के लोग भी आने लगे। उसके बाद दयालु जनरल साहब आए थे, उन्होंने जो मिलिट्री का एमएस डिपार्टमेंट है उसमें हमारे डेफ बच्चे उन्होंने रख ली। फिर तो दयालु बच्चों की सर्विस की कोई चिंता नहीं रही। रेलवे में ब्लाइंड बच्चे हैं, एजुकेशन में ब्लाइंड बच्चे चले गए, स्कूल टीचर बन गए। अब तो उसके बाद हमारे पास डीएड का और बीएड का कॉलेज भी है। जो बच्चे प्लस टू कर लेते हैं वो डिप्लोमा करेंगे, जो बीए कर लेते हैं वो बीएड कर लेते हैं। अब तो हजारों की तादाद में जो टीचर हैं सरकारी स्कूलों में लगे हुए, पंजाब में भी, यहाँ राजस्थान में भी। सर्विस की कोई अभी तक तो इन बच्चों को कोई चिंता नहीं। कई बच्चों का अपना पर्सनल बिजनेस भी है।
1: श्रोताओं, हम बता दें, देश का पहला ब्रेल एटीएम शुरू कराने में श्रेय श्री स्वामी जी को जाता है। स्वामी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में यह विचार कैसे आया?
0: पहले तो राजस्थान में ब्रेल बुक छापने का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने केवाईसी के माध्यम से पता करके स्वीडन से 20 लाख की गवर्नमेंट की माध्यम से ब्रेल प्रेस मंगवाई, ताकि राजस्थान के बच्चों को फिर हम फ्री राजस्थान के कोर्स की किताबें जहां जहां ब्रेल स्कूल था वहां वहां भेजते रहे। दूसरा ये था कि बैंकों का काफी विस्तार होने लगा, एटीएम लगने लगे, तो हमारा ब्लाइंड बच्चा एटीएम से पैसे कैसे निकालेगा। फिर हमने बैंक से संपर्क किया, इन्होंने फिर एक ऐसा बनाया एटीएम जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रेल प्रेस के शब्दों से, तब हमारे बच्चे जाकर के एटीएम में इससे अपने पैसे निकाल लेते थे। पहला एटीएम जो ब्रेल लिपि में था वो गंगानगर से शुरू हुआ। पहली जो कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है राजस्थान में पहली अपने लगाई।
1: स्वामी जी, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज की धारणा में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और यह बदलाव क्यों जरूरी है?
0: जो यंग होता है ना, यूथ, जिसको आजकल जेन जी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को दिशा देनी, जैसे हमें गुरुदेव ने दिशा दे दी ज्वाली में बढ़ते बढ़ते इधर लगे, तो ये दिशा मिलती है कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। अगर वहाँ भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहे विकलांगों के प्रति, ब्लाइंड बच्चा कैसे पढ़ सकता है, यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, डेफ की भी कॉन्फ्रेंस जगह जगह रखी जाए, ताकि लोगों में बहुत बड़ी भावना है दयालु, कहीं भी बात करो यंग ब्लड सब कुछ करने के लिए, समाज सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे को समाज ने बहुत सहयोग दिया, जगह जगह समाज सहयोग दे रहा है, सहयोग लेने वाला चाहिए। इसलिए अगर ऐसे आयोजन हो जगह जगह यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, ये ब्लाइंड कैसे पढ़ता है, जैसे अब हमारे पास ना कॉलेजों के बसें भर के आती है, वो उनका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, डेफ बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं। और किस प्रकार कई लोग आते हैं, किस प्रकार हमारा आई हॉस्पिटल बड़ा है, उसमें आजकल 6 सर्जन है और 70-80 ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं। हर हफ्ते इन दिनों में जगह जगह फ्री कैंप लगते हैं, बस जाती है, फ्री चेकअप करेंगे, लोगों की कमेटियां बड़ी हुई हैं, उनसे जो डिटेक्ट होता है मरीज उनको फ्री लाते हैं, फ्री ऑपरेशन होता है, भोजन पानी की दवाई की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, फ्री ही उसको बस से वहाँ छोड़ के आएंगे उसके डेस्टिनेशन पे जहाँ से उसको लेकर के आए हैं। तो ये व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो कमेटियां बनी हुई है उनके सहयोग से ये व्यवस्था भी बहुत सुंदर चल रही है और आज तक 5 लाख से ऊपर आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं।
1: स्वामी जी, युवाओं को मौलिकता के इस युग में समाज सेवा से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?
0: एक पहले धारणा बनी थी कि कॉलेजों में कोई धार्मिक टीचर भी हो तो उनके माध्यम से हो सकता है। बाकी ये जो आजकल मैंने बताया ना कि कॉलेजों के स्टूडेंट जो हैं, जहाँ प्लस टू के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो लोग बसे लेकर के अगर ऐसी संस्थाएं बच्चों को दिखाएं जहाँ वृद्धों के लिए काम हो रहा है, जहाँ डेफ बच्चों के लिए काम हो रहा है, ब्लाइंड के लिए काम हो रहा है, MR बच्चों के लिए काम हो रहा है, हमारे यहाँ निशुल्क अंग भी लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल निशुल्क, यहाँ कैंप लगता है उसमें बिल्कुल निशुल्क, जो भी कोई आएगा चाहे रिपेयर करवाए चाहे अंग लगाए वो भी निशुल्क काम यहाँ होता है। तो इस प्रकार अगर संस्था दिखाई जाए विद्यार्थियों को, कॉलेज तक के विद्यार्थियों को, क्योंकि तब तक बच्चा समझने लग जाता है तो वो ना जाने कहाँ जा करके कौन सा काम क्या कर दे। कई स्टूडेंट हमारे गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपने गांव में 5-4 बच्चे लेकर के स्कूल खोल रखे हैं, वो भी सेवा भावना में लगे हुए हैं, कईयों ने डेफ बच्चों के लिए ट्यूशन का काम कर रखा है। तो ये काम हो सकता है अगर इस प्रकार ये संस्था दिखाई जाए, तो मेरे को भी

0: देखने से प्रेरणा मिली। या तो दयालु किसी चीज को देखता है तब वो देखता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, जब वो किसी चीज के बारे में सुनता है कि ये फलानी जगह संस्था चल रही है जी बहुत अच्छी है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी करूँ। इस प्रकार कई लोग हमें यहाँ संपर्क करते हैं, नाना प्रकार की जो संस्थाएं हैं कि आप कैसे डेफ चला रहे हो, मुखपत्र विद्यालय कैसे चला रहे हो, इससे प्रेरणा लेकर के आप देखिए बठिंडा में बहुत बड़ा स्कूल बन गया। हमारे संप्रदाय के संत ने 10 एकड़ जमीन दी, वहाँ उसको डीसी साहब जो है रेड क्रॉस वो चला रही। इसी प्रकार ये अबोर में हमारे पास में वहाँ भी मुखपत्र विद्यालय शुरू किया गया, फरीदकोट में भी है। इस प्रकार छोटे छोटे विद्यालय भी शुरू हो जाए तब भी बच्चा नजदीक ही अपनी शिक्षा प्राप्त करके, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ दयालु, बच्चा अगर वो शिक्षित हो गया ना वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाता है, वो समाज को समझने लग जाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ता है बातें सुनता है तो जो नौकरी लगे हुए हैं उनको भी मिलता है, उनके मिलने से वो भी प्रयास करते। इसलिए ब्लाइंड बच्चे रेलवे में भी जा रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे बैंकों में भी जा रहे हैं, डेफ भी जा रहे हैं, बस बच्चों को लेना है स्कूल में लाना है, उसको किसी ढंग से प्रशिक्षित करो। एक बार वो प्रशिक्षित हो गया समझ लो बच्चा मुख्य धारा में जुड़ गया, अब वो समाज पे परिवार पे बोझ नहीं रहेगा, सपोर्टर बन जाएगा।
1: स्वामी जी आपकी तपस्या को 50 साल पूरे हो रहे हैं, आने वाले समय में आप कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें साकार होते हुए देखना चाहते हैं?
0: चलो मुझे ऐसा लगता है जो आजकल सरकार का जो वातावरण बन रहा है जैसे, और इनको नाम दे दिया दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों के प्रति जो सरकार की योजनाएं चल रही है नाना प्रकार की, उनको ऋण देना, उनको अपने पांव पे खड़ा करने की योजना देना, उनको सर्विस देना, रिजर्वेशन देना, ऐसी योजना जो सरकार चला रही है, तो ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी तरफ से सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की है, और समाज सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर के कई जो दानवीर हैं, जहाँ जो इसमें समाज में कुछ काम करना चाहते हैं समाज सेवी, उनको भी उत्साह मिलता है। तो मैं एक और भी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस गंगानगर जिले की सेवा को मान्यता दी है, ये पद्मश्री दे करके इनकी सेवा को स्वीकार किया है कि यहाँ कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं जिले की ओर से भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: स्वामी जी मुझे जितेंद्र शर्मा को अनुमति दीजिए।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे जितेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा

0: अनोखा है साथियों, मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है,
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
3: आप तो जंगल के राजा हैं। मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
4: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
3: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।

0: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
2: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की

0: जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ,
4: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
5: फटने जा,
4: पीछे हटो, पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
5: बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
8: Sir.
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
6: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स

0: ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
0: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
7: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का।

0: वो टूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1291। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। आज श्रोतों गंगा दशहरा है। आस्था मोक्ष और जीवन का प्रतीक माँ गंगा के पावन अवतरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गंगा माँ को नमन करते हुए कुछ गढ़वाली और कुमाऊनी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। शुभारंभ कर रहे हैं नीता कुकरेती के गाय इस गढ़वाली में गंगा गीत के साथ।

तो श्रोताओ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है गंगा दशहरा का पावन पर्व और इसी उपलक्ष में आज आपको हम कुछ गंगा माँ को समर्पित कुमाऊनी और गढ़वाली गीत सुनवा रहे हैं। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं समूह स्वरों में गढ़वाली लोकगीत माँ गंगा को नमन करते हुए।

पतित पावनी पापहारिणी पुण्यदायिनी जीवन प्रदायिनी माँ गंगा तुम्हें कोटि कोटि नमन है। उत्तराखंड के लोकगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के

0: जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम

0: एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में

0: में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है। ये पूर्णता, परोपकार, आध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है, उसका जो रेडियो डिवीजन है, वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है।

0: और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: आपने स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
1: सुस्वागतम। अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआईट।
0: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
1: जी,
0: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थी, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
1: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था क्योंकि वहां पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
0: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
1: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
0: ओके।
1: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युवावाणी में एग्जाम दिया था एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
0: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
1: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफर पूरा अपनी आंखों से देखा है।
0: बिल्कुल।
1: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नजदीकी से। एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना, AIR ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय उसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो ऑन इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहां पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड
0: जी,
1: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
0: बिल्कुल। डिजिटल एरा में आने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बदलाव हुए हैं बहुत अच्छे हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, किस तरफ जा रहे हैं हम?
1: देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आदमी की ह्यूमन एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए होता है
0: जी,
1: और उसको उस तरह से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी भी है एक प्रोग्रेस के लिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे डिजिटल एरा में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही हमारे अगेंस्ट काम करने लगती है। मैं इसका एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगी, इससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि पहले ड्राइवर्स जो थे उनको पूरे रोड्स दिल्ली में मालूम होते थे, आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है उसके बाद गाड़ी चलाता है, तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता, क्या खास डिफरेंस है, और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
1: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो
0: उस पे भी आएंगे हम आगे।
1: हाँ, वो तो फर्क, बहुत फर्क है, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब

0: आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म या आप कह सकते हैं कि एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन बिहाइंड दैट. आई फील दैट वे AIR हैज द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है.
1: राइट राइट जी. अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुंचेगा, या क्या AI का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीजें हो रही हैं?
0: देखिए AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है, लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल इंटेलिजेंस विच इज अ ह्यूमन एसेट. तो वहां पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम हम लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि आज का जमाना देखिए इट इज नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टुडे. वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे, लेकिन और एक चीज और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है.
1: मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं है और उनको अक्सर ठगा जाता है.
0: बिल्कुल
1: ये होता है, तो ये नहीं होना चाहिए.
0: बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है.
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम करती है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है, किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है जी. जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातों में या देख सकते हैं, तो उसमें पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती है तकनीकी. पहली बात तो हम आप जहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है. तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं.
1: तो क्या क्वालिटी में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स. सी डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर, कि आपने कहीं पे गलत बोल दिया या आपकी आवाज में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी. लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहां तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है. और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं वो लोग भी काफी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है.
1: राइट.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है. ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छी इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. सो अब इस फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं, तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है?

0: लोगों के सामने?
1: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय, जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीजें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीजें आज के डेट में स्वाभाविक हैं। तो आप अगर उसको कुछ चीजें कटेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे। तो वो तो एक कहीं पे है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो कठिन है, यस, लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है। इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेनजी भी सुनती। मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है वहां पे एआईआर का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
0: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
1: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस। और शुरू में मुझे याद है जब ने ज्वाइन किया था उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास टेन सर्विस में, तो वहाँ पे जब लोग पहुंचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है। तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू दिस सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स।
0: ओह माय गॉड।
1: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे, तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड, लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल। तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद।
0: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
1: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, बेबी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वे थे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वे बॉयज, एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया, लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई, तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे, तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी, शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द एआईआर इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती। एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात मैं उस समय की मैं बोलती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, माय फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉइनिंग टू एआईआर इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people, और वो बात तो मैंने गांठ बांध ली, और
0: quite a support.

0: बिल्कुल, और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो? मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट।
0: देखिए बहुत सारी इंसिडेंट आज के जमाने में फनी लगती है, लेकिन उस समय तो जान पे आई रहती है। एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट, हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे, एंड हम लोग को समझिए आज के जमाने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था, दैट वाज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन, एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन, बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो।
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे।
0: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करने पर, एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गर्म दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे। हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गर्म दूध मिलेगा, बिल्कुल बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम। सो उस समय जान सांसत में आई होती है
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम।
0: यस इट वाज ड्यूरिंग, यस
1: 90 इयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही, तो इन 90 इयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहां से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
1: जी,
0: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है। और आज की डेट में जहां पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: एक सवाल मेरा और है आपसे, आप जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास्कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
0: अगर सच बताऊं, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है।
1: बिल्कुल,
0: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे,
1: ट्रू,
0: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं।
0: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल, तो और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माय इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का, तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे
1: रमता गया
0: आप जानते गए, प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है।
1: मल्टीटास्क। आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैको फॉल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार, तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
0: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट

0: प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया. हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीजें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है. तो माई बॉस टॉट मी, और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है, वो नहीं लगनी चाहिए.
1: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना इज वेरी गुड, थोड़ा हम
0: बहुत
1: डर कर सीख लेते थे वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है. बिल्कुल. अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली है, मैं एक चीज और पूछ लूं फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है.
0: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है, बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला. तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का, आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का. तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना
1: पड़ता था. मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज.
0: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल और अलर्ट ऑल्सो. जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था, एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीजें ऑन होती हैं और उसी तरह से. तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया. तो उनका गुस्सा भी वाजिब है, हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन वहां पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोग ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है.
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है. हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मलिका हैं और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेन्ड हैं, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए.
0: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: बात है
1: क्या?
0: आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने हैं।
1: ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
0: थैंक यू सो मच।
1: चलिए, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे

0: ये तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
1: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे,
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू सो मच।
1: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट।

अरिजीत सिंह और साथियों को अभी आपने सुना बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म में सचेत परंपरा का संगीत था, सिद्धार्थ गरिमा ने गीत लिखा था। अगला गाना गंगा की लहरें फिल्म से हमने लिया है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

पतित पावनी पापनाशिनी मोक्षदायिनी माँ गंगा जो मात्र नदी ही नहीं वरन हमारी भारतीय सभ्यता आस्था का अभिन्न अंग है। हमारी संस्कृति धर्म ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुई है माँ गंगा।

मुकेश के गाए संत ज्ञानेश्वर फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है अगला प्रसारण, दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 3:10 लीजिए 3:11 हुए हैं। मन भवन लेकर देविका हाजिर है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और हिंदी सिने जगत की एक महत्वपूर्ण जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसा कोई नहीं है जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने ना पसंद हो और आज मन भवन में हम याद करेंगे इसी जोड़ी के गीतों को क्योंकि आज लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। तो आपसे यही गुजारिश है अगर आप मेल कर रहे हैं तो ऐसे गीत मेल कीजिए, ऐसे गीतों की फरमाइश मेल कीजिए जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत हों। और मेल आई डी आपको बता दें fmgoldaiardelhi@gmail.com fmgoldaiardelhi@gmail.com। पहला गीत ये

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:23 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारे सायंकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मिलते हैं जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने

0: सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा, रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान

0: रखा है। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
1: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 and he was known for his emotional bond with his constituents.
2: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
1: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
2: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
1: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
2: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
1: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
2: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
2: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy Palniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
2: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 decades.
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन

0: और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरु जी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: Shri Bharat Singh Bharati represented India at the Sagar Festival in Mauritius in 1987, where his album Purabiyatan was released. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स।
2: हरमनप्रीत कौर बुलर खेल क्रिकेट,
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth of
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
2: Shri Kumar Bose कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic
2: Janardhan
1: community.
2: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami
1: to
2: Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल

0: Airaj to Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki.
1: Shrimati Devaki Amma Ji, Samaj Seva.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं, लेकिन दुखी नहीं हैं। वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लुपुआ से आती हैं।
0: Shrimati Devaki Amma relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर
2: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the vice president to report on the security.
1: Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
0: B.C. Roy
1: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
0: When through his sustained artistic practice, Shri Gafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
1: Shri Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet

0: नाटक अकादमी अवार्ड गुजरात लोकल राष्ट्रीय
1: श्री रघुवीर खेड़कर कला थिएटर।
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
0: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number 1 hai और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी।
1: देवा लाड दादा लाड कृषि।
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टिवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं।

0: शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं, और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: Organ Man ke roop mein jane jate hain aur Donate Life Sansthan ke roop mein इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya एवं शिक्षा.
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
0: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड.
2: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
1: श्री मुखोपाध्याय
2: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग.
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which is
2: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान.
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya एवं शिक्षा.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है.
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam. From November 1980s, as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti, he revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshara.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji, jo ki 90 saal ke hain, unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
2: positions.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: Shri
1: have
2: Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur Hari Charan Shaikia ji, jo ki 94 varsh ke hain wheelchair par jate hue, aapne is kala ka na sirf sanrakshan kiya hai, balki ise logo tak bhi pahunchaya hai aur bahut sare logo ko satriya kala ka prashikshan bhi diya hai. Maniye Pradhanmantri ji, Maniye Grahmantri ji, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हूँ।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Prof.

0: प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य एवं शिक्षा।
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: श्री बलदेव सिंह खेल, हॉकी कोच।
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
0: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan evam Engineering.
1: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। ही हैज आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन लॉन्चिंग ज्ञान दर्शन ग्रुप ऑफ चैनल्स, द फर्स्ट 24-आवर एजुकेशनल टेलीविजन चैनल।
0: प्रोफेसर श्याम सुंदर, चिकित्सा कालाजार।
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों, खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: Professor 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya evam Shiksha.
0: Gambhir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation

0: liberation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halle War, Samaj Seva.
2: अब बारी हेली वॉर जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
0: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स. सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति.
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए. धन्यवाद महोदय.

0: you can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायणी

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आपो सभी लोग न कार्यक्रम में। कार्यक्रम में रोजे की चार आप लोगों दगड़ बातचीत करूल, आप लोगों के जानकारी दियुल और दगड़ में आप लोगों मनोरंजन ल करूल कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों दगड़। श्रोताओं आज विश्व फुटबॉल दिवस छू। हर साल 25 मई हूँ विश्व फुटबॉल दिवस मनाई जा और यह दिन खेलक रूप में फुटबॉल एक वैश्विक लोकप्रियता कूटनीति और एक सांस्कृतिक प्रभावक जश्न मनुणक लीजी समर्पित छू। श्रोताओं साल 1924 में 25 मई के दिन पेरिस ओलंपिक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करी गो, जैल फिर अघिल जैबेर फीफा विश्व कपेक नीवल धरी और तबे बटी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल शांति और कूटनीति में फुटबॉलक प्रभाव के मान्यता देते हुए 25 मई के आधिकारिक तौर पर विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करी गो। श्रोताओं फुटबॉल दुनियाक सबूह लोकप्रिय खेल होनक दगड़ दगड़ शांति के बढ़ावा दिनक और सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करण और सार्वभौमिक मूल्यों के बढ़ाई धरने अपार क्षमता ले धरूं। और दगड़े श्रोताओं चाहे क्वेल खेल हो, खेल हमू के मानसिक रूपेल शारीरिक रूपेल स्वस्थ धरण में मदद करनी, खेल हमू में सामाजिक भावना के विकसित करनी और सामूहिक तौर पर अघिल बढ़ना के लिए खेल हमू के प्रेरित करनी। और यही कारण छू कि

विश्व फुटबॉल दिवसक महत्व, खेलों प्रति लोगों के जागरूकरण, खेलों प्रति लोगों की भावनाओं के बढ़ूण, खेलों में उन्हें रुचि के बढ़ूण, यह दिनक महत्व के दिखूं। तो श्रोताओं, हम सब उनके लिए थोड़ थोड़ ही सही, लेकिन अपने जीवन में खेलों के शामिल करण चैन, और क्वेल खेल जो हमके पसंद छू, वीकली जी थोड़ बखत निकाल बेर वो खेल खेल लेने चाहिए, चाहे फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, चाहे क्वेल खेल वो हो, वीकली जी हमके जरूर अपन जी बखत निकालना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप स्वस्थ बनी रहूं और खेल भावना हमारे भीतर बनी रहूं।

0: श्रोताओं, गोकुल सिंह बिष्ट और दगड़ियों के स्वर में आप लोगों सुनो यह कुमाऊनी लोकगीत। और आप कार्यक्रम में अखिल बढ़नू और आप लोगों के सुनो नु मिशन लाइफ वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अलवर एक असिस्टेंट प्रोफेसर सरिता पालनी दगड़ करी हुई हमर यह बातचीत। में शामिल किया है सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की रिमोट सेंसिंग व जीआईएस विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर मिस सरिता पालनी को। और आज हम मैम से जानकारी लेंगे वर्तमान परिस्थितियों में ऊर्जा की बचत के संबंध में। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद नेहा जी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
0: मैम, जैसा कि मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इस मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली का क्या अर्थ है।
1: देखिए नेहा जी, जैसा आपने बताया कि मिशन लाइफ की जो शुरुआत है वो भारत सरकार द्वारा की गई है, तो इसका जो सबसे पहले शुभारंभ था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में इसका सबसे पहले वर्णन किया गया था। तो मिशन लाइफ का जो मतलब है, उसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जो हमारी जीवन शैली है उससे ये संबंधित है। ये आज के समय में एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार किस तरीके से बनाया जाए। आज के समय में हम देख सकते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो काफी तेजी से बदल रहा है, तो अब हमारे जो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस जिम्मेदारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही भारत सरकार ने इस मिशन लाइफ को या फिर पर्यावरण के लिए जीवन शैली के जन आंदोलन को शुरू किया है, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सके और इस ऐसी जीवन शैली को अपना सके जिसमें वो अपने दैनिक कार्यों में या फिर छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों में ऊर्जा को संरक्षित करने के प्रति कार्यरत हो सके।
0: बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है या फिर ऊर्जा की बचत पर अब बहस लगातार तेज होती जा रही है, तो जब आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से, बढ़ते प्रदूषण से या फिर हम कहें कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं का सामना जब पूरी दुनिया कर रही है, तो ऐसे समय में ऊर्जा की बचत को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
1: देखिए नेहा जी, आज के जो वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा की बचत है वो अति महत्वपूर्ण हमारे लिए आज के समय में बन चुका है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम लोग जिस प्रकार हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है या फिर जिस प्रकार हमारी जो जनसंख्या है बहुत ही तेजी से विश्व में बढ़ रही है, तो ऊर्जा का दोहन

0: उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोगों को ऊर्जा की बचत के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे ज़रूर, ताकि हम लोग ऊर्जा को एक बड़े पैमाने पर बचा सकें, और आने वाला जो भविष्य है या फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम उस ऊर्जा को बचा कर रख सकें। वरना क्या होगा कि अगर हम लोग उस ऊर्जा की बचत नहीं करेंगे तो हमारी जो ये अभी जो पीढ़ी चल रही है वो ही इस ऊर्जा का और प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर दोहन कर देगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने अभी कहा कि छोटी छोटे कदम, यानी कि हम छोटे छोटे तौर पर भी अगर ऊर्जा की बचत करेंगे तो हम बहुत सी ऊर्जा को बचा पाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी सी बिजली बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, या बिजली के अलावा थोड़ा सा पानी बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े को बचाने से क्या फ़र्क है, बचाना है तो बड़े लेवल पर बचाओ। लेकिन मैम, क्या वास्तव में छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं?
0: जी बिल्कुल, छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे आपने एक बहुत पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जानते हैं

0: पानी बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े को बचाने से क्या फर्क है, बचाना है तो बड़े लेवल पर बचाओ। लेकिन मैम, क्या वास्तव में छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं?
1: जी बिल्कुल, छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे आपने एक बहुत पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति भी प्रतिदिन एक बिजली की यूनिट की बचत करता है, तो एक दिन में हम लोग 1.4 बिलियन यूनिट की बचत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसी तरीके से अगर हम लोग एक लीटर पानी की भी बचत करते हैं, तो हम लोग कितना पानी बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज के समय में आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पुराने समय में पानी की बहुतायत हुआ करती थी, वो क्षेत्र भी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो संकट है, ये आने वाले समय में और भी गंभीर होते चले जाएंगे अगर हमने अभी से अपनी ऊर्जा का बचत शुरू नहीं करी। तो हम लोगों को अपने छोटे छोटे प्रयासों को बहुत कम आकलित नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से ही एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल। इसके अलावा मैम, क्या ये जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, और इस आधुनिक जीवन शैली में जो हम बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज कर रहे हैं, डिजिटल होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हर घर में आजकल पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो ये जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है और इसके साथ साथ इनमें जो बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल है, तो ये ऊर्जा की बर्बादी को किस प्रकार बढ़ा रहे हैं?
1: देखिए नेहा जी, अगर मैं आपको इन शब्दों में समझाऊं तो हमारी जो आज की जीवन शैली है उसको इलेक्ट्रॉनिक जीवन शैली भी कह सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारे जीवन का कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अछूता ना हो। अगर हम लोग हमारी जो जनसंख्या है वो आज के समय में बहुत बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से अगर शहर बढ़ रहे हैं और उद्योग बढ़ रहे हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए जमीन भी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अगर जमीन चाहिए तो वृक्षों का कटान हो रहा है, जो हमें हवा देते थे या जो पानी को संतुलित करते थे, अब उन वृक्षों का अगर कटान हो रहा है, तो यानी कि हमें हवा के लिए एसी की ज़रूरत पड़ेगी, पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से पानी के लिए हमें बोरवेल लगाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन शैली है, जिसमें हम एसी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, डिशवॉशर यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ये ऊर्जा का उपयोग अनावश्यक रूप से कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर आज के समय में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग कम करके पुराने, या फिर आप कह सकते हैं जो पारंपरिक तरीके हैं, उनकी तरफ जाने लगें, तो ऊर्जा का काफी हद तक हमारी बचत हो सकती है।
0: बिल्कुल। और मैम, ये जो लगातार बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और इनका जो लगातार तेजी से इनका हम उपयोग बढ़ा रहे हैं अपने जीवन में, तो आपको क्या लगता है कि ये भविष्य में ऊर्जा संकट को और गंभीर बना सकता है?
1: जी बिल्कुल। जो हमारी ऊर्जा है, वो देखिए नेहा जी, आज के समय में हमारा जो भारत देश है वो एक विकासशील देश है।
0: बिल्कुल।
1: तो विकासशील देशों में आज भी ऊर्जा के लिए पारंपरिक जो संसाधन है, जैसे कोयला, आपका पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस, इन्हीं का दोहन किया जाता है। जबकि जो विकसित देश हैं, वहां पर आज के समय में नवीनीकरण संसाधन या नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे सौर ऊर्जा का या जलीय ऊर्जा का। तो हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे अगर हम लोग अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा है वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से ही आएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इस प्रकार अगर हमारी जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जीवन शैली है, ये भविष्य में बहुत बड़ा संकट हमारे लिए जरूर खड़ा करने वाली है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए और हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए।
0: बिल्कुल। तो इसके अलावा मैम, जैसा कि हम ऊर्जा की जो हम बहुत ज़्यादा खपत हम लगातार कर रहे हैं, और आपने भी अभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात करी, तो जो भी हमारे ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, तो इससे ऊर्जा की अधिक खपत करने से इससे हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है?
1: देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक अपना भौगोलिक ओपिनियन देना चाहूंगी। हमारे जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। वैसे तो वो कई तरह से विभाजित किए जाते हैं, लेकिन अगर हम ऊर्जा संसाधनों की बात करें, तो उसमें एक नवीनीकरण होते हैं और एक अनवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा या जलीय ऊर्जा, और अनवीनीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम फिर से नवीनीकृत नहीं कर सकते या जिनके नवीनीकरण में कई वर्ष लग जाएंगे, जैसे कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर

0: नेचुरल गैस। तो आज के समय में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत एक विकासशील देश है जो ज्यादातर अनवीनीकरणीय संसाधनों पर, ऊर्जा संसाधनों पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम लोग अनवीनीकरण संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो उसके लिए हमें कई जगह पर माइनिंग करनी पड़ेगी, यानी खुदान करना पड़ेगा। प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि उनका खुदान करने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए
1: जी,
0: है ना। तो कई तरीके के वृक्षों का कटान हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारी काफी ज्यादा बढ़ेंगी। तो पर्यावरण को हमारा बहुत ज्यादा खतरा है अगर हमारे ऊर्जा संसाधन बहुत ज्यादा दोहन किया जाता है, और साथ ही साथ अनवीनीकरण जो संसाधन है वो तो खत्म होंगे ही होंगे। तो भविष्य में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमको अनवीनीकरण संसाधन बिल्कुल भी देखने को ना मिले।
1: बिल्कुल। तो मैम, सौर ऊर्जा की बात अभी आपने करी, और आजकल सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए लगातार भारत सरकार भी कार्यरत है और लोगों को इसके लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है, और सरकार ने एक इनिशिएटिव के तौर पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके भी एक योजना चलाई हुई है ताकि लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना कितना फायदेमंद हो सकता है?
0: सौर ऊर्जा, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है या ऊर्जा संसाधन है, यानी कि जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो कभी नष्ट नहीं होगा, जहां तक हम समझ पाते हैं कि सूर्य कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसकी ऊर्जा का दोहन करना हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है पारंपरिक संसाधनों की जगह पर। और इसके साथ साथ अगर हम लोग सूर्य की जो ऊर्जा है, यानी जो सौर ऊर्जा है, उसको आज के समय में कई तरीके से यूज़ किया जाता है। घरों में तो उसका यूज़ किया ही जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, जैसे खाना पकाने में उसका प्रयोग किया जाता है, बिजली के लिए उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पर ड्रोन उड़ाने तक के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा है
1: जी।
0: और साथ ही साथ बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहाँ पर भी धीरे धीरे सौर ऊर्जा को प्राकृतिक या आप कह सकते हैं पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। और जो हमारे खुले मैदान होते हैं या जहाँ पर सौर ऊर्जा हमें बहुत बहुतायत में प्राप्त होती है, जैसे हमारे राजस्थान, हमारा जो एक राज्य है, वहाँ पर भी सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा विकल्प है कि वहाँ पर हम सौर ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रयोग में ला सकते हैं। तो हमारे लिए सौर ऊर्जा जो है पारंपरिक संसाधनों का एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है, और साथ ही साथ ये एक लंबे समय तक चलने वाला विकल्प हो सकता है, और उसके साथ ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता
1: जी।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
1: बिल्कुल। तो मैम, आपके अनुसार बच्चे और युवा ऊर्जा संरक्षण में अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकते हैं?
0: देखिए, बच्चे जो हमारे होते हैं वो आने वाली समय का भविष्य है हमारे देश का, और ये जो युवा पीढ़ी है उनके हाथ में हमारे देश की जो है नींव है। तो अगर अब हमें आने वाले समय में कुछ बदलाव लाने हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बच्चों पर और युवा पीढ़ी पर ही रखना होगा। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी
1: जी।
0: कहा जाता है कि जापान जो है एक देश, वहां पर लोग पहले से कॉफी का उपयोग या सेवन नहीं किया करते थे
1: जी।
0: लेकिन जब कैपिटलिस्ट देशों को वहां पर कॉफी को लाना था तो उन्होंने वहां के बड़े लोगों को टारगेट नहीं किया, बल्कि वहां की जनता के छोटे छोटे, यानी आप कह सकते हैं युवा पीढ़ी को चॉकलेट्स या कॉफी फ्लेवर चॉकलेट्स देनी, बांटनी शुरू करी, मतलब बेचनी शुरू करी। तो जब वो ही युवा पीढ़ी बड़ी हुई तो धीरे धीरे उन्होंने कॉफी का टेस्ट डेवलप कर लिया।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक बहुत छोटा सा वाक्य है, इसी वाक्य से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग अपने बच्चों को या अपनी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में सक्षम बनाने के लिए या उनकी मानसिकता को बदलने के लिए कैसे उन्हें अभी से ढाल सकते हैं। तो बच्चे हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको हम अवेयरनेस या जागरूकता प्रोग्रामों में ले जाकर उनके प्रति, उनके बीच में जागरूकता फैलाकर पर्यावरण के प्रति, ऊर्जा संसाधनों के प्रति उन्हें अभी से इस लायक बना सकते हैं कि वो आने वाले समय में कुछ चेंजेस करें।
1: तो इसके अलावा मैम, अगर मैं बात करूं तो अगर हर एक व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक ऊर्जा को बचाने वाली आदत अपनाए या फिर कोई भी अच्छी एक आदत अपने अंदर अपनाए अपने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, तो वो आदत क्या हो सकती है और इसका देश और पर्यावरण पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है?
0: देखिए, हमें बहुत बड़ी बड़ी आदतों से शुरू नहीं करना है। हम आए दिन देखते हैं कि अगर हम कहीं पर बैठे हैं अपने घर के अंदर और कोई लाइट खुली है जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम उस लाइट के बटन को बंद करके भी एक ये इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सकते हैं। बड़े बड़े चेंजेस तो तब आएंगे जब सारे लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत लेवल पर काम करना

0: चाहते हैं तो एक लाइट का बटन बंद करके या एक पंखे का बटन बंद करके अनावश्यक रूप से कोई भी प्लग खुला ना छोड़कर या अगर आपके पानी का जो नल है वो थोड़ा सा खुला है उसको बंद करके या आपने कोई पौधा लगाया है तो उसको रोज पानी देकर
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे इन छोटे छोटे प्रयासों से ही हम लोग जो है ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और इसको छोटा नहीं समझना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम लोग एक यूनिट बिजली एक दिन में बचाते हैं तो एक दिन में 1.4 बिलियन यूनिट की बचत होती है। तो अगर हर व्यक्ति ये काम शुरू करेगा तो हमारी ऊर्जा का बहुत सारा बचत हो सकती है।
1: बिल्कुल। इसके अलावा मैम अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वे पर्यावरण के लिए जीवन शैली को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें?
0: देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि देयर इज नो प्लैनेट बी, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सिर्फ एकमात्र ही ऐसा प्लैनेट है जो जहाँ पर जीवन संभव है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम लोगों ने इसको बचाने के लिए आज प्रयास नहीं किए तो कल के दिन हम लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो पृथ्वी के पास हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन हर मनुष्य की ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। तो हम लोगों को यही मान के चलना है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, अपने ऊर्जा संसाधनों को बचाना है और सबसे बड़ी बात आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए हमें एक बेहतर भविष्य की संकल्पना को पूर्ण करना है।
1: बिल्कुल।
0: मैं बस यही कहना चाहूँगी।
1: बिल्कुल। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने हमें प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों पर इतने विस्तार में जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
2: श्रोताओं, आप लोगों सुनी मिशन लाइफ वर्तमान परिदृश्य में ऊर्जा बचत विषय पर सोबन सिंह जीना परिसर अल्मड़े रिमोट सेंसिंग और जीआईएस विभागक असिस्टेंट प्रोफेसर मिस सरिता पालनी दगड़ हमारी भेंट वार्ता।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आज उत्तराखंडक महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार श्रीदेव सुमनजूक जयंती छू। उनर जन्म 25 मई 1916 हूँ टिहरी गढ़वालक जौल गाँव में हो। श्रोताओ, उनर नंचिनक नाम श्रीदत्त बडोनी छी। साल 1930 में 14 साल एक आयु में उन्होंल नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले और उन जेल गी। यह एक बात साल 1937 में उनर प्रसिद्ध काव्य संग्रह सुमन सौरभ प्रकाशित हो और यह एक अलावा उन्होंल पत्रकारिता के माध्यम जनता के जागरूक करो। श्रोताओ, टिहरी के राजा की दमनकारी नीतियों खिलाफ उन्होंल आंदोलन करो और जेल में 209 दिन बिताई। जेल में अमानवीय अत्याचार सहते हुए ले उ अपन अधिकारों की मांग पर अड़ी रही और 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उ शहीद हई। श्रोताओ, उनर याद में हर साल 25 जुलाई हूँ उत्तराखंड में सुमन दिवस मनाई जा। और यस, उत्तराखंडक महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकारक जयंती के अवसर पर हम उनके शत शत नमन करनू।

श्रोताओ नरेंद्र सिंह नेगी और अनीता कंडारी गई योई गढ़वाल लोकगीतक दगड़ आज उत्तरायण कार्यक्रम इतिक संपन्न करने की नेहा जोशी के दियो आज्ञा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कैसे पॉसिबल? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी

0: देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मुदिता। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सुरक्षा के लिए प्रशासन रहा अलर्ट। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा उत्तराखंड भ्रमण के बाद टिहरी जिले के विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हुई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए गए। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
3: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जिससे सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वे उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2008 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर पुस्तकें भी लिखी। उनका जीवन शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
2: प्रदेश में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और भू कानून उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में ग्राम सभाओं की सरकारी भूमि की जांच तेज करने और भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी भू कानून का उल्लंघन पाया जाए वहां संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाए। उन्होंने शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने और वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे की नियमित जाँच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेजी लाने को कहा। साथ ही अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून को देखते हुए सभी जिलों में पूर्व तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों को पहले से सूचना देने को कहा। इसके अलावा कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने

0: के निर्देश भी दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा भ्रमण के दौरान विकासखंड कार्यालय परिसर में लगभग 89 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित दीदी की लाइब्रेरी का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समान रूप से कार्य कर रही है ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। एक रिपोर्ट।
2: प्रशासन के अनुसार आज शाम तक हरिद्वार में लगभग 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। रविवार को जहां करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, वहीं आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते रहे। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, चंडी घाट, कनघल और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया था। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। वहीं गंगा दशहरा और गंगोत्री धाम में भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भागीरथी तट पर स्नान कर माँ गंगा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के लिए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से साक्षी सिंह।
1: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर के उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जिले के बिलंगाना विकासखंड स्थित विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हो गई। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा के साथ विश्वनाथ नदी में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान हवन, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया तथा स्थानीय देवी देवताओं का अवतरण भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि ये डोली यात्रा पिछले 27 वर्षों से उत्तराखंड भ्रमण कर रही है और यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति के साथ उत्तराखंड में 1,000 धामों को चिन्हित करना है।
3: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा की 27वीं वर्ष की यात्रा का समापन होता है गंगा दशहरा के दिन। इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाने का है। तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही चार धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में। तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
1: टिहरी में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से चंबा विकासखंड के जोल गांव में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जन नायक थे जिन्होंने राजशाही के खिलाफ संघर्ष कर जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। टिहरी रियासत को आजाद कराने के लिए श्रीदेव सुमन के 84 दिन तक उपवास रखने के संघर्ष को याद करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि श्रीदेव सुमन का संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी

0: पद्म भूषण से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सुरक्षा के लिए प्रशासन रहा अलर्ट। और विश्वनाथ जगदीशिलाई डोली यात्रा उत्तराखंड भ्रमण के बाद टिहरी जिले के विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पहली प्रस्तुति में सुधाकर शर्मा का लिखा ये भक्ति पद स्वर है अनूप जलोटा का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आइए एक बार फिर सुनते हैं अनूप जलोटा के सुर में ये भक्ति वंदन।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बट्टी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 को पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण बटी सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटाण और भू कानून का प्रभावी पालन थे लेकी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश देनी। गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि बटी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का विसोन पर्वत पहुंचे की संपन्नवाई। अब समाचार विस्तार बटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहनी। द्वि पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री सहित 66 अलंकरण आज दिए गए। शेष पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण में प्रदान करेगी जाला। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करी। यू सम्मान उन्थे जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान का वास्ता प्रदान करे गयी।
1: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता का रूप में पछड़े जनन। उन साल 1966 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करी, जैसे सीमांत क्षेत्र में शिक्षा थे बढ़ावा मिलू। ये का अलावा उन विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में उला उत्तराखंड का गठन का बाद राज्य की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2008 में वो राज्यसभा को चुने गए ने और साल 2014 में नैनीताल उद्धम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने ने। उन महाराष्ट्र का राज्यपाल का रूप में भी काम करी। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य का विकास से जुड़े विषयों पर किताब भी लिखी। उनको जीवन, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रति समर्पण को उदाहरण मने जाते। आकाशवाणी देहरादून खुणे की समाचार कक्ष बटे की सविता बड़थवाल।
0: प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटाण और भू कानून का प्रभावी पालन थे लेकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश देनी। खटीमा बटी सभी जिलाधिकारियों का दगड़ी वर्चुअल बैठक कर दीदा। मुख्यमंत्री बोली कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और भू कानून उल्लंघन का मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे जाली।
2: बैठक में ग्राम सभाओं की सरकारी भूमि की जांच तेज करण और भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बोली कि जब भी भू कानून का उल्लंघन पाए जाए वक्त संबंधित भूमि थे राज्य सरकार मिले जाए। उन शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाण और वक्त संपत्ति ब्यौरा की नियमित जाँच करने का निर्देश भी दी। मुख्यमंत्री ने बहरी राज्यों बटे आण वाला लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेज लाने के निर्देश दिए। उला अवैध राशन कार्ड बना के सरकारी सुविधा का लाभ लेने वाला अपात्र लोगों से चिन्हित करना खुणी भी बोली। बैठक में मुख्यमंत्री ने आण वाला मानसून से दिखता हुआ सभी जिलों में पहली बटे तैयारी पूरी करने का निर्देश दीनी। उन टूटिया रास्तों का मरम्मत, पेयजल व्यवस्था से सुचारू रखण और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों से पहली बटे सूचना देना खुणी भी बोली। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बिटी अमित सुंदरियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा भ्रमण का दौरान विकासखंड कार्यालय परिसर में लगभग 90 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं को लोकार्पण करी। ये दौरान उन बोली कि राज्य सरकार शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और जन सुविधाओं का विस्तार का वास्ता लगातार कार्य करनी चाह। मुख्यमंत्री

0: बेहतरीन 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित दीदी की लाइब्रेरी को लोकार्पण कर दीदा बोली कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कना युवाओं का वास्ता महत्वपूर्ण केंद्र साबित होली। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार शिक्षा स्वास्थ्य खेल रोजगार और आधारभूत संरचना का क्षेत्र में समान रूप से कार्य करनी चाहिए ताकि विराम को लाभ समाज का प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे जा सको। टिहरी माँ अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान का दगड़ा मनाई गयी। ये अवसर पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की तरफ बटी चंबा विकासखंड का जौल गांव में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कैरी श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम थे संबोधित कर दीदा टिहरी विधायक किशोर उपाध्यायन बोली कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जन नायक छा जौन राजशाही का खिलाफ संघर्ष करी जनता का अधिकारों का वास्ता आवाज उठाई टिहरी रियासत थे आजाद करण का वास्ता श्रीदेव सुमन को 84 दिन तक बढ़त रखण को संघर्ष थे याद कैरी की। श्रीदेव उपाध्यायन बोली कि श्रीदेव सुमन को संघर्ष आज भी युवाओं का वास्ता प्रेरणा को स्रोचा।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी चा। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगे की सुख समृद्धि की कामना करी। हर हर गंगे और जय मां गंगे का जय घोष से पूर्व वातावरण भक्तिमय बन उराई।
2: प्रशासन का मुताबिक शाम बगे तक हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान किए। रविवार खुणजक 27 लाख श्रद्धालु स्नान कह चाहिए वकी आज सवेर बिटी लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचना रहे। हर की पैड़ी सुभाष घाट चंडी घाट कनखल और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल। भीड़ दर दिख रहा पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रही। पूरा मेला क्षेत्र थे 11 जोन और 27 सेक्टरों में बटी गए। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था होनी सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन दगड़ी निगरानी करेगी। उखी गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम भी श्रद्धा आस्था को अद्भुत संगम देखने को मिल। गंगोत्री मंदिर और घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन करेंगे जैसे पूर्व क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबेगे। श्रद्धालु गंगा स्नान कुणी प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था पर संतोष जते। आकाशवाणी देहरादून कुणी समाचार कक्ष बिटी अमित सिंह दयाल।
0: विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड स्थित विसोन पर्वत पहुंची की संपन्न हुई गयी। गंगा दशहरा का अवसर पर श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा का दगड़ी विश्वनाथ नदी में स्नान कैरी की आस्था की डुबकी लगाई। ये दौरान हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को आयोजन करे गयी और स्थानीय देवी देवताओं को भी अवतरण वाई। कार्यक्रम में मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताई कि ये डोली यात्रा पिछला 27 सालों बटी उत्तराखंड भ्रमण कनीचा उन बोली की यात्रा को उद्देश्य विश्व शांति का दगड़ा दगड़ी उत्तराखंड में 1,000 धामों थे अंकित कनीचा। अब तक 432 धामों को चिन्हीकरण हुई गयी और ये को खाका सरकार थे भेजे जालू।
3: विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा की 27वें वर्ष की यात्रा का समापन हो चुका है गंगा दशहरा के दिन। इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाने का है। तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही 4 धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 ऐसे शक्तिपीठ हैं जिनको भी धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में। तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
0: उधम सिंह नगर में ईंधन बचत पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस थे बढ़ावा देने का उद्देश्य से पुलिस विभाग थे 50 हाईटेक साइकिल उपलब्ध करेगी। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति पुलिस कर्मियों थे साइकिल को वितरण करी। SSP अजय गणपति बताई कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आह्वान पर ईंधन बचाने की दिशा में ये पहल करेगी। उन्होंने बताई कि एक निजी बाइक कंपनी का सहयोग बटी

0: मिली यूं साइकिल को उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में विभिन्न सरकारी कार्यों का वास्ता करे जालू। यहां से वाहनों पर निर्भरता कम होली, ईंधन की बचत होली और पर्यावरण संरक्षण ते भी बढ़ावा मिललू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान कैनी। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण बटी सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटाण और भू कानून का प्रभावी पालन थे लेकी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश दीनी। गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि बटी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात और विश्वनाथ जगदीश शीला डोली यात्रा। लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का विसोन पर्वत पहुंची की संपन्न। यहां का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुई। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सुभद्रेन के मैं नमस्कार दरियो, आज हम बात करने लग रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना पर। दरियो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करे। आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग माटी की उर्वरता, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ो। यही समस्या का देखते हुए भारत सरकार वर्ष 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ करी। यो योजना का उद्देश्य जैविक खेत के बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि करना छे। दगड़ियों, परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना छे। यो योजना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन अंतर्गत चलाई जा। इमें किसान के समूह बढ़ावे जैविक खेत करना लीजिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दगड़ियों, योजना कुछ मुख्य उद्देश्य लेसन जस की जैविक खेत को बढ़ावा देन, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के कम करण, माटी उर्वरता एवं पर्यावरण संरक्षण करण, किसानों की आय बढ़ाउन, जैविक उत्पादों उत्पादन एवं विपणन के बढ़ावा देना। दगड़ियों, किसानों के समूह बढ़ावे खेत करने सहायता दी जा। प्रत्येक समूह में लगभग 50 किसान शामिल करी जानी। किसानों के जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद आदि उपयोग लिए प्रोत्साहित करी जा। जैविक प्रमाणन एक सुविधा उपलब्ध करी जा। किसानों के प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी ले दी जा। जैविक उत्पादों विपणन में सहायता ले प्रदान करी जा। दगड़ियों, यो योजना कई लाभ छन जैसे कि माटी उर्वरता में वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि, पशुपालन के बढ़ावा जस अनेक फायदे छन। दगड़ियों, परंपरागत कृषि विकास योजना किसानों तथा पर्यावरण द्वैतीन लिए अत्यंत लाभकारी योजना छे। यो योजना जैविक खेत के बढ़ावा दिवे, भूमि उर्वरता बढ़ाए रखो तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। यदि किसानों के उचित प्रशिक्षण, बाजार सरकारी सहायता मिलती रहो तो भारत जैविक खेती क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बढ़ सको। तो दगड़ियों, यू तो छी आप लोगों ने बातचीत और अब कार्यक्रम में आगे सुन लो शैलजा मसीह।

0: दरे वाला आप लोग नल से जमा सी आ गई फीच लोग की सुनो और अब कार्यक्रम में आगे सुनो जैविक खाद का प्रयोग करते कृषक श्री मदन मोहन गिरिधर करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। नमस्कार श्रोता मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सोमेश्वर के लोध ग्राम निवासी श्री मदन मोहन गिरी जी से। गिरी जी से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग विषय पर। तो गिरी जी, हमारे क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आपका स्वागत है। गिरी जी,
1: धन्यवाद।
0: मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जैविक उर्वरक क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास?
1: हाँ, जैविक उर्वरक ऐसे है क्योंकि ये जो हमारी जो पहाड़ की पारंपरिक जो हमारी खेती है, धान मड़ुआ जो भी है, इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी रासायनिक खाद, कोई भी तरह की खाद नहीं डाली जाती थी। पहले भी नहीं डाली जाती थी, अभी भी डाली जाती है तो बहुत कम मात्रा में डाली जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी खेती होती है तो यहाँ पर पूरे हर आदमी के गाँव में, हर घर में, घर घर में जो है गाय होती है, भैंस होती है, बकरियां होती हैं, तो उसी के खाद से ही जो उत्पादन होता है हमारा, तो हम वो सब उत्पादन उसी खाद से करते हैं।
0: अच्छा गिरी जी, आप करते हैं जैविक उर्वरकों का प्रयोग?
1: हाँ, मैं जैविक का ही उपयोग करता हूँ, मैं रासायनिक खाद कोई भी यूज नहीं करता हूँ।
0: अच्छा, आप जैविक का ही उपयोग करते हैं?
1: दो तीन भैंस रखे हैं और गाय रखी हैं, मुर्गियां वो बकरियां रखी हैं, तो मैंने उसके लिए पिट बनाए हुए हैं। मैं उनका जो गोबर और मलमूत्र होता है तो उसको उसमें इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें मैं कैसे डालता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो कैसे उसको क्या करता है, एकदम वो कैचों का भोजन भी हो जाता है। मेरे दो तीन पीट बने हुए हैं, एक पीट में मैंने डाला तो जब वो भर जाता है तब मैं फिर दूसरे पीट में डालता हूँ और नीचे से उसमें होल बने होते हैं, वो जब कैचुए पहले उसमें जब पूरा वो खा लेते हैं तो तब वो फिर दूसरी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं पहले खाद को खेतों में उपयोग करता हूँ।
0: अच्छा, तो गिरी जी, जैविक उर्वरक है ये कृषि के लिए में कैसे लाभदायक होते हैं?
1: ये कृषि के लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। इसमें दो तीन चीजें होती हैं, उसकी जो फसल है उसमें जो भी उत्पादन हमारा होगा वो केमिकल रहित होगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और टिकाऊ रहेगा।
0: अच्छा,
1: और दूसरा उसमें कोई इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, जिससे यूरिया से या और फर्टिलाइजर है उनसे जो बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होती है। और जैसे मैं उसमें लौकी, कद्दू, खीरा और सब्जी में ये रखता हूँ, अगर मेरी लौकी अभी तक, मतलब ये है कि जबकि मेरी लौकी अक्टूबर में होगी थी, अभी तक मेरी लौकी में हरापन है।
0: अच्छा,
1: अभी तक ऐसा लगेगी जैसे, अगर मैं इसकी फोटो आपको दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा तो ये लगेगी अभी अभी इन्होंने तोड़ रखी, हालांकि अभी खाने लायक नहीं है, उनका टाइम निकल जाता है। लेकिन इससे की जो, जैसे मैं मार्केट से कोई सब्जी लाता हूँ, हम लोग जब लाते हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब ये मुरझा जाती है, घर में लाते लाते हरी सब्जी मुरझा जाती है। मेरी, मैं जब बॉम्बे में सर्विस करता था तो मैं यहाँ से बाई एयर बॉम्बे तक हरी सब्जी, लवलाई, पालक अपने घर का जो है मैं वहाँ अपने साथियों के लिए ले जाता।
0: ये जो जैविक उर्वरक है ना, इनका कहते हैं कि संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अगर हम ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो उससे भी हमें नुकसान होने की संभावना रहती है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हमें ये गोबर की खाद जो हमारी है, इसको हम अगर खेतों में डाल देते हैं तो पौधा उतनी खाद लेता है जितना उसको आवश्यकता होती है। बाकी वो खाद क्या है, वो सरते सरते दो साल तीन साल तक वो काम करती है, तो उसे अब हम ज्यादा मात्रा, जैसे केमिकल है, जैसे यूरिया है, यूरिया को हम ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो वो क्या करता, पेड़ों को सुखा देगा। लेकिन ये दो साल जैसे गोबर की खाद हमने इस सब बार डाली तो ये खाद हमारे यहाँ हमारे खेतों में दो या तीन साल तक फसलों को देती जाएगी और उतनी पेड़ उतनी मात्रा में उसको लेगा जितनी उसकी आवश्यकता है, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है।
0: जी, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि हमें भी चाहिए कि हम कोई भी बीज लगाएं या हम खाद डालें तो हमें जैविक कृषि की अग्रसर होना चाहिए।
1: हाँ जी, हमें कृषि मतलब ये कि जैविक खाद के लिए ही अग्रसर होना चाहिए, उससे हमारा फसल जो होता है टिकाऊ होता है और फसल में या मतलब सब्जियों में उसमें स्वाद आता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है, जैसे कोई बीमारी उसे उत्पन्न हो जाएगी या ऐसा कोई भी उसमें नहीं होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे जो होता है कि जहाँ

0: तरफ से हमारी मिट्टी मजबूत होती है, वहीं से हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। गिरी जी, आप मुझे ये बताइए कि हमें कितनी कितनी मात्रा में ये जैविक खाद डालनी चाहिए अपने खेतों में?
1: ऐसा है, इसकी मात्रा अगर ज्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वही मैंने बताया कि आपके अगले साल को भी हो जाएगी, दूसरे मतलब वो दो तीन साल तक आपकी वो चलती रहेगी। अगर आपने जैविक खाद डाल दी तो वो वहाँ पर की मिट्टी क्या होती है, एकदम भुरभुरी हो जाती है और एकदम वो बिल्कुल ठोस पन उसमें नहीं रहता है। यूरिया में क्या है, यूरिया आप डालोगे उससे पौधे को एकदम खुराक मिलेगी, एकदम वो करेगा, उसके बाद वो मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। जो दोबारा अगर यूरिया नहीं डालोगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, उससे खेत बंजर ही हो जाएगा।
0: हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खाद बनाते कैसे हैं?
1: हाँ, जैविक खाद बनाने के लिए गाय का गोमूत्र जो है उसको लेते हैं, या आपके घर के पास कूड़ा करकट है उसको एक खड्डे में डाल देते हैं, तो उसमें वो उसमें पानी डालते रहते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि वो जो गोबर की खाद है या गोमूत्र है वो उसमें सड़ जाता है, वो सड़ने के बाद वो जैविक खाद बन जाती है।
0: जी, तो कितने दिनों में तैयार हो जाती है जैविक खाद?
1: ये जैविक खाद तो गाय का उसका ये करीब 5-6 महीने तो इसमें लगते हैं। अगर हम उसको कच्ची वो खाद को अगर हम अपने खेतों में डालते हैं तो उसे वो एक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। कुरमुरा एक होता है, तो उसमें सड़ी हुई खाद हमेशा डालनी चाहिए। एक मतलब जितनी सड़ी हो, 1-2 साल सड़ी हो तो वो और अच्छी मजबूत होती है।
0: अच्छा, तो गिरी जी, जो जैविक खाद है ये हमने बनाई, जो वर्मी कंपोस्ट क्या है?
1: बर्मी कंपोस्ट भी यही है, बस सेम यही चीज है। बर्मी कंपोस्ट भी यही है, वही बर्मी कंपोस्ट। वो जैसे अपने जैविक खाद गांव में बनाते हैं, जो लोग कैचुए नहीं डालते हैं, कैचुए डालने से वो उसको एकदम बिल्कुल महीन कर देता है। कैचुए वो उसको गोबर को खाते हैं, उसके बाद फिर उसको वो जो है बहुत महीन बनती है और रिफाइंड वे में है वो।
0: अच्छा, तो इसके अलावा और कैसे तैयार करें और क्या क्या फायदे हैं जैविक उर्वरकों के?
1: जैविक ऐसा है, अभी जो नया जो पद्धति जो आई है, तो पहले तो मैं जो करता हूँ, मैं एक 200 लीटर पानी में दो किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 10 केजी गाय का गोबर और 10 केजी गाय का गोमूत्र, उसको लेके उसमें मिला करके उसको हिलाते हैं, बिल्कुल 8-10 दिन तक उसको हिलाते रहते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो है जीवामृत वो खाद तैयार हो जाती है पॉलीक्विटिक फॉर्म में, और 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, तो उसको हम अपने खेतों में उधर उधर डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे पेड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है।
0: अच्छा।
1: और उसमें जो फल लगेगा, जो ये लगेगा, वो कोई भी नुकसानदायक नहीं होता है। और दूसरा ऐसा है, अगर जैसे पहाड़ों में मैं जैसे कोई भी सब्जी है या उसमें मैं कोई भी कीटनाशक मैं यूज नहीं करता हूँ, तो कीटनाशक यूज करने के लिए मैंने गाय का गोत्र और हमारे यहाँ जो बिच्छू घास होती है, शिशोण घास पहाड़ में बहुत ज्यादा होती है, उसको एक ड्रम में मैं बना लेता हूँ और मैं उसी का छिड़काव करता हूँ, और उस कोई भी ऐसा केमिकल उसके बराबरी नहीं करेगा और उससे कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: पहले हमारे जब मतलब की बूढ़े लोग, ये जब दादा दादी लोग, जैसे लौकी है, कद्दू है, ये खीरा है, और इनमें जब वो कीड़ा लगता था तो वो बोला था गाय का गोत्र को उसको उसका छिड़काव करो, तो वही चीज है, अगर उसमें आप बिच्छू घास और मिला दोगे तो वो एक बहुत ही परफेक्ट कीटनाशक हो जाएगा।
0: जी गिरी जी, तो गिरी जी आपने जैविक
1: नुकसान भी नहीं करेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो गिरी जी, आपने जैविक उर्वरकों का कृषि पर प्रभाव विषय पर ये जानकारी दी, आप चलते चलते और हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो रासायनिक है, यूरिया है या जो भी केमिकल है, जो भी कीटनाशक है, उसको यूज नहीं करें तो अच्छा है। और आप ये जैविक, इससे फसल का उत्पादन भी ज्यादा बढ़ता है। अब यूरिया है या इसको हमने 1 साल डाला, अगर अगले साल अगली फसल में हम नहीं डालेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी जैविक खाद को डालेंगे तो हमारे ये एक जो खाद है वो दो साल तीन साल तक वो आपकी जमीन को उपजाऊ बना के रखेगी।
0: तो गिरी जी, आपने जैविक उर्वरकों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दगड़े वाले, आप लोग ने उर्वरकों को, जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग विषय पर यह जानकारी सुनी। और दगड़े, अब बातचीत कर लो गुबरेला कीट नियंत्रण पर। दगड़े, कृषि में

विभिन्न प्रकार कीट फसलों के नुकसान पहुंचने इनमें गुबरेलाल एक प्रमुख हानिकारक कीट है। यो कीट पौधों जड़ों पातों तथा तनों के नुकसान पहुंचे फसल उत्पादन के कम कर दी। गुबरेला कीट विशेष रूप से सागों दलहनी फसलों तथा अन्य कृषि फसलों के प्रभावित करो। यदि इनका समय रहते एक नियंत्रण कर लीजिए तो काफ़ी फायदेमंद हो। अब बात करूँ तो गयो कि हम पहचानो कसी यह गुबरेला सामान्य तो भूर कालिया गहरे रंग कठोर शरीर वाले कीट हूँ। ये एक लावा माटा भीतर जबीर पौधों के जड़ों के काटबेर उनके नुकसान पहुँचुनी और वयस्क कीट पातों के खेवेर फसल के हानि पहुँचुनी। दगड़ियों ये द्वारा होने वाली जो हानि जो नुकसान छ पौधों जड़ों के नष्ट है जा पौधों की वृद्धि रुक जा पात कटनी और सुखाण लगनी फसलों की उपज एक गुणवत्ता में कमी हूँ ज़्यादा प्रकोप होने पर पूर्व फसलें नष्ट हो जा। दगड़ियों गुबरेला नियंत्रण जो उपाय छन वो यो प्रकार छन कि गर्मी मौसम में हम उनके अपू खेत गैर जुताई कर मटर में छिपी अंड और लावा नष्ट रह जानी खेत में खरपतवार और फसल अवशेष के हटे फिर साफ सफाई बनाई रखना चाहिए। रात्रि में प्रकाश प्रपंच लगुण वयस्क गुबरेल आकर्षित है वेर नष्ट है जानी नीमक खली गौमूत्र तथा जैविक कीटनाशकों उपयोग ले गुबरेला नियंत्रण में सहायता मिले। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों प्रयोगल कीटों के प्रकोप बढ़ सको या लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह है उपयुक्त कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। दवाओं उपयोग सावधानी पूर्वक हमन के करना चाहिए। दगड़ियों यह जो रोकथामक उपाय छन वो छन बखत पर बुआई करना चाहिए रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्मों हमन के चयन करना चाहिए फसल चक्र हमन के अपनू चाहें अपने खेत में जल निकासी उचित व्यवस्था हमन के रखना चाहिए। दगड़ियों गुबरेला एक हानिकारक कीट है जो फसलों के भारी नुकसान पहुँचू उचित कृषि प्रबंधन जैविक उपायों तथा बखत पर नियंत्रण तकनीकों को अपने बेर यह प्रकोप पे कम कर जा सको। किसानों के जागरूक है वे समन्वित कीट प्रबंधन पद्धति अपनू चें जैल फसल उत्पादन में वृद्धि हो और आर्थिक हानि बटी बचाव है सको। तो दगड़ियों यो तो छे आप लोगों द्वारा बातचीत और अब कार्यक्रम में सुनो संदीप सोनू गई हुई शोलो गीत।

तो दगड़े वाला आप लोग नल संदीप सोनू गई हुई शो लोगी सुना और अब बखत को आज ग्राम जगत कार्यक्रम संपन्न करना बोलो मैं आप लोग दगड़ फिर बातचीत करूँ एल मकान गया दियो नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।

0: पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल प्रदेश में सरकारी जमीन बट्टी अतिक्रमण हटुणक और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर सभी जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी। गंगा दशहराक मौक पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि जात पुलिस बल लगी। और विश्वनाथ जगदीशिला टोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जिला बिसोन पर्वत पुजबेर सम्पन्न। अब समाचार विस्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल भई। द्वि पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दगड़े 66 अलंकरण आज दी गई। बाकी पद्म पुरस्कार समारोह दोहर चरण में दी जाल। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान सम्मानित करो। यो सम्मान उनको जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनर योगदान के लिए प्रदान करेगी। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पछाणे जानल। उनल साल 1966 में पिथौरगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करी, जेल सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ावा मिलो। ये के अलावा उनल विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वो उत्तराखंड गठन के बाद राज्य पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ले संभाली। साल 2008 में राज्यसभा के लिए चुनी गई और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट बठे लोकसभा सांसद बने। उनल महाराष्ट्र राज्यपाल रूप में ले काम करो। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आंदोलन और राज्यक विकास से जुड़ी विषयों पर किताब ले लिखी। उनर जीवन शिक्षा, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण प्रति समर्पण उदाहरण मानी जा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बठे ममता पांडे।
0: प्रदेश में सरकारी भूमि बट्टी अतिक्रमण हटुणक और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सभी जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी राखी। खटीमा बटी सभी जिलाधिकारियों दगड़ वर्चुअल बैठक करबेर मुख्यमंत्री को कि सरकारी जमीनों में अवैध कब्जों और भू कानून तोड़नक मामलों में झट कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में ग्राम सभाओं के सरकारी जमीन की जांच तेज करन और भू कानून का तोड़ देर खरीदे गए जमीनों को तुरंत जांच करने के निर्देश दी गयी छन। मुख्यमंत्री को कि जान ले भू कानून को तोड़न पाई जल व संबंधित जमीन को राज्य सरकार में निहित की जल। उन्होंने शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जे हटान और वफ संपत्तियों ब्यौरे को रोजाना जाँच करने के लिए निर्देश दी छन। मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में आई लोगों को शस्त्र लाइसेंस जाँच, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेजी लाने को कहा। यह दगड़े अवैध राशन कार्ड बनाए बे सरकारी सुविधाओं को लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को चयन करने के लिए निर्देश दी छन। बैठक में मुख्यमंत्री आगामी मानसून को देख बेर सभी जिलों में पहली भी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दी। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था सुचारू रखन और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों को पहली भी सूचना देने को कही छू। आकाशवाणी देहरादून जी समाचार कक्ष में वेणु प्रीति।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल खटीमा भ्रमण वक्त विकास खंड कार्यालय परिसर में लगभग 89 लाख डबलों अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण करो। वो वक्त उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और लोगों की सुविधाओं को बनूनक लीजिए लगातार काम करने। मुख्यमंत्री 55 लाख डबलों की लागत थे बड़ी दीदी की लाइब्रेरी लोकार्पण कर बिर को कि यो लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी करण वाल नांतिनों के लिए जरूरी केंद्र साबित हुई। मुख्यमंत्री को कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत संरचना क्षेत्र में समान रूप काम करने जेल विकासक लाभ समाजक हर वर्ग तले पूज सको। टिहरी में अमर शहीद श्रीदेव सुमनक 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मानक दगड़ मनाई गई। यो मौक पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के और बटी चंबा विकास खंडक जोल गांव में वही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वहां के स्थानीय लोगों को उनर प्रतिमा में मालहालवेर श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम को संबोधित करवे टिहरी

0: विधायक किशोर उपाध्याय को कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जननायक छी जनूर राजशाही खिलाफ संघर्ष कर लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठे टिहरी रियासत को आजाद करोना के लिए श्रीदेव सुमनक 84 दिन तले व्रत राखण और उनर संघर्ष को याद कर वीर श्री उपाध्याय को कि श्रीदेव सुमनक संघर्ष आज ले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत छू।
1: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रही। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगी रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी दगड़े अलग अलग घाटों में श्रद्धालुओं आस्था एक डुबकी लगे बेर सुख समृद्धि की कामना की। हर हर गंगे और जय मां गंगे जय घोषल पूरा वातावरण भक्ति भय बनी रहो। एक रिपोर्ट
2: प्रशासन के अनुसार ब्याह जाने हरिद्वार में लगभग 55 लाख है जात श्रद्धालुओं गंगनाए इतवार के जा करीब 27 लाख श्रद्धालुओं गंगा नाचे वहीं आज रक्त बटे ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पुजल रही। हर की पैड़ी सुभाष घाट चंडीघाट कनखल और अन्य जगहों पर ले श्रद्धालुओं भाड़ भीड़ देखने के लिए मिली। भीड़ के देखभेर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और पूर्म्याल प्रशासन के करीब 11 जून और 27 सेक्टरों में बांटी गयो। घाट और प्रमुख बाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करी गयो छी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों निगरानी करी गयी। वहीं गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में ले श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलो। देश विदेश बटे पूजिन हजारों श्रद्धालुओं भागीरथी तट पर नैबेर गंगा पूज अर्चना करी। गंगोत्री मंदिर और घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन करी गयो छी। जैल कुरुक्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबी रहो श्रद्धालुओं गंगा नानक लीजिए प्रशासनक ओर बटे की गई सारी व्यवस्थाओं पर संतोष जताए। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बटे ममता पांडे।
0: हरिद्वार में गंगा स्नान आई ले चलते रुणो और भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगुणा लीजिए अलग अलग घाटों में पूजन नागरी। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटरक उत्तराखंड भ्रमणक बाद आज टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड स्थित बिसोन पर्वत पुजबेर संपन्न है गे। गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालु डोली यात्रा दगड़े विश्वनाथ नदी में नैबेर आस्था एक डुबकी लगे। यो बखत हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करी गयो और स्थानीय देवी देवतों अवतरित भई। कार्यक्रम मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानील बता कि यो डोली यात्रा पिछाड़ी 27 वर्षों बटी उत्तराखंड भ्रमण करने उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति दगड़ दगड़े उत्तराखंड में 1000 धामों को चिन्हित करण छू और एल ताले 432 धामों का चिन्हीकरण कर हेलो। यह योजना सरकार को भेजी जाली।
3: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा की 27वीं वर्ष की यात्रा का समापन होता है गंगा दशहरा के दिन। इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाने का है। तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही चार धाम के अलावा पूरे प्रदेश में हजार ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनको भी धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में। तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
0: उधम सिंह नगर में ईंधन बचत पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की सेहत को बढ़ावा देने के उद्देश्य पुलिस विभाग को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गईं। रुद्रपुर पुलिस लाइन में भई कार्यक्रम वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपतिल पुलिस कर्मियों को साइकिल बांटी। एसएसपी अजय गणपतिल बता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोण पर ईंधन बचाने की दिशा में यो शुरुआत की जा रही। उन्होंने बता कि एक निजी बाइक कंपनी के सहयोग मिली यो साइकिलों का उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में अलग अलग सरकारी कामों के लिए करी जाल। यह वाहनों में निर्भरता कम होली ईंधन एक बचत होली और पर्यावरण संरक्षण को ले बढ़ावा मिलल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल प्रदेश में सरकारी जमीन बटी अतिक्रमण हटुणा और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर सब जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी। गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार

0: पर और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा की दृष्टि ज्यादा पुलिस बल लगी और विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जिला बिसोन पर्वत पुजबेर सम्पन्न। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं रांझना फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है जावेद अली, कीर्ति सगेठिया और पूजा वैद्यनाथ ने। इरशाद कामिल का लिखा गीत है और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए श्रोताओं, सुनते हैं बेनी दयाल और श्रेया घोषाल को फिल्म गजनी में। प्रसून जोशी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आप सुनते हैं विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में के की आवाज़, और फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं जॉली LLB 2 फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा ने। विशाल खुराना का संगीत निर्देशन है और शब्द हैं जुनैद वासी के।

इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। पहली प्रस्तुति में चंदन दास के स्वर में ये गजल।

हसन रिजवी का कलाम अभी आपने सुना, स्वर था गुलाम अली का। कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये प्रस्तुति।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स स्कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने किया जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज, जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ओशोनिया चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कल से जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित किया जाएगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां वियतनाम में आज भी भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो है लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। वियतनाम के दनांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे ने यलमन अमान गिल्दी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने शिरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलते अब चर्चा करते हैं फ्रेंच ओपन पर। रोलैंड गॉरेस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने प्रतियोगिता का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी एम्पेट्सी पेरिकार्ड को हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
1: 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेस के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ 2 हार का हो गया है। नोवाक जोकोविच 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारे हैं। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरिकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। इसके बाद जोकोविच ने पेरिकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 5-7, 7-5, 6-1 और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में जहां नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे, वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भले ही इस प्रतियोगिता में सीमित हो, लेकिन आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और जूनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए 9 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में वितरित किए गए। टेनिस में विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वहीं पद्मश्री पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को दिया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जबकि भगवान दास रैकवार को मार्शल आर्ट्स में और के पजनीवेल को सिलंबम में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्त्रिस्ल्वी को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बात कर लेते ओशेनिया चैंपियनशिप में, जहां कल भारत ने कई पदक अपने नाम किए। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते, वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया।
3: भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी रेसिंग में टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अमर सिंह देवंदा ने करीब 283 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया। मेजबान देश जापान ने मासाकी मोतो की अगुवाई में टीम स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। जापान की मीहो नाकाता ने 261 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता। उनके प्रदर्शन की वजह से जापान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक अपने नाम किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान भी बढ़ाया। अब सीधे ले चलते आपको झारखंड की राजधानी, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। आज का दिन भी रिकॉर्ड और पदकों के लिहाज से बेहद शानदार रहा है। स्टेडियम में मौजूद हमारी संवाददाता महवीश रहमान सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महवीश
4: जी,
0: फेडरेशन कप के चौथे दिन आज मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिला? हमारे श्रोताओं को आज के मुख्य परिणामों के बारे में बताइए।
4: जी प्रशांत, आज चौथे दिन मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आज कई राज्यों के स्टार एथलीटों ने पदक जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, जिससे दर्शकों को बेहद करीबी और रोमांचक मैच देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी खबर दौड़ और हाई जंप स्पर्धाओं से आ रही है, जहां नए विजेताओं ने बाजी मारी है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे खेल प्रेमियों को ये भी बताइए कि आज महिलाओं और पुरुषों की इन मुख्य स्पर्धाओं में किसने बाजी मारी है?
4: आज महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सीमा ने कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर विथाया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, तो इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आज के इस शानदार प्रदर्शन का आगे क्या असर देखने को मिल रहा है?
4: जी, जैसा कि हम सब जानते हैं जो यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेंगे। तो प्रतियोगिता के शुरुआती दिन में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके और तेजस्वी शंकर ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे उसका उत्साह आज चौथे दिन भी खिलाड़ियों में साफ दिखा। आज विधाया रामराज, ख्याति माथुर, सीमा और शिवाजी जैसे खिलाड़ियों ने उनकी जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले कल पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। काउंटडाउन नियम से देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तो हमें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए देश को कई मेडल की उम्मीदें अब जाग गई हैं।
0: जी महवेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 26 से 31 मई के बीच जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन

0: समिति ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में ओलंपिक में दो पदक अपने नाम कर चुकी मनु भाकर और उनकी साथी ओलंपियन और विश्व चैंपियन पदक विजेता ईशा सिंह शामिल हैं। एक नजर भारतीय निशानेबाजों पर।
1: इस प्रतियोगिता की शुरुआत 25 मीटर पिस्टल विमेन्स प्रेसिजन स्टेज इवेंट से होगी। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन राउंड और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का एलिमिनेशन राउंड भी शुरू होगा, जिसके बाद 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। पहले दिन दो फाइनल मुकाबले होंगे। इन इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और 10 मीटर एयर राइफल मेंस शामिल है। इस विशेष कप के लिए 80 देशों के कुल 696 एथलीट्स ने दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। दो बार की ओलंपियन और पूर्व एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत म्यूनिख में सबसे सीनियर भारतीय निशानेबाज होंगी। अन्य अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अनिश भानवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एलाविनिल वलारिविन, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता सुरुचि सिंह और मौजूदा म्यूनिक मिक्स टीम चैंपियन अर्जुन बबूता शामिल है। भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वालों में पुणे की 22 वर्षीय साक्षी पाड़ेकर है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय सूरज शर्मा म्यूनिक में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे युवा है। वहीं 23 वर्षीय अजेंद्र सिंह चौहान ने घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है। म्यूनिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के साथ भारत के लिए अपने पहले ओलंपिक इवेंट में हिस्सा लेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: नॉर्वे के ओस्लो में आज से शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा की मौजूदगी में भारतीय दल टूर्नामेंट में खिताब के अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। बात आईपीएल पर, आईपीएल के लीग मुकाबलों के कल समापन के साथ ही प्लेऑफ की चार टीम फाइनल हो गई हैं। प्रतियोगिता में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और कई ध्वस्त हुए। जानते हैं अब तक खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
2: अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला क्वालिफायर वन में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटन से 26 मई को धर्मशाला में होगा, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एलिमिनेटर में 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। वहीं क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम का मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम ऑरेंज कैप की रेस की बात करें तो वहां साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं 616 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे, हेनरी क्लासन 606 रन के साथ तीसरे और केएल राहुल 594 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप के लिए भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट और बेहतर इकोनॉमी के साथ पहले, कासिगो रबाडा 24 विकेट के साथ दूसरे, जोफ्रा आर्चर और अंशुल काम्बोज 21 विकेटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान

0: और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुँच गई हैं।
3: High international crude prices and
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: Against the assessment of
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों के

0: बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सू से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor, late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
4: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
3: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
0: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides, Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Ram Bhil, Ratilal Mohanlal Borisagar, Swami Brahmadev and Kumar Bose. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
3: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India or SIDBI today, Ms. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
5: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: The initiatives launched include the SIDBI MacFin Mart, a digital platform to help MSMEs access machinery through a structured marketplace supporting price discovery, standardization, and technology adoption. The Finance Minister also launched the RRB co-lending portal to operationalize partnerships between SIDBI and regional rural banks for improving credit flow in rural and underserved regions. Another major initiative launched was MORE, or Modernization of Rural Enterprises, a program aimed at providing transformational support to 10,000 rural micro and artisanal units over the next 3 years through cluster-based interventions. SIDBI Chairman and Managing Director Manoj Mittal said the initiatives would improve credit access, promote technology adoption and support modernization of rural enterprises, making them more competitive and future-ready. The Indian Army, NDRF and the State Disaster Response Force, SDRF, are leading a rescue operation at the Gulmarg Gondola in Jammu and Kashmir following a technical malfunction in the gondola cable car system. The fault caused a sudden suspension of services between the base station and Phase 1, leaving several tourists stranded today. In a statement, the Indian Army said that following a distress call from local authorities, rescue teams were swiftly mobilized to the site. According to the Indian Army, A total of 65 cable cars were affected

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। आइए आप सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में भूपेंद्र को निदा फाजली और नक्स लालपुरी के शब्द हैं, और इन शब्दों को संगीत में पिरोया है खयाम ने।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं ये सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के बोल हैं और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

अनाड़ी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देख

0: देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नज़र रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरेट्रिक केयरगिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरेट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरेट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक OTP आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
0: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें OTP आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे OTP आएगा
0: जी,
1: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा।

0: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा। पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जाता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके, तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
1: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं, क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को, किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से, कि आप प्लीज़ जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं, वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना

0: चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम, पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशन बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
0: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे, बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी,
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएँ हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीज़न या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है, मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुज़ुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं हैं और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने ख़ास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिस पे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
4: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
4: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 14567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं।

0: अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
1: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहाँ भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
2: जी
1: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
0: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
1: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
0: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
0: जी,
3: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें आपके बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
1: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
1: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
0: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
4: नमस्कार,
0: आपका सवाल। हाँ जी,
4: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
0: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
1: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
1: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था

0: उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
1: मंत्रालय ने
0: जी। राजेश नेमा जी।
2: जी
0: जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
0: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
1: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज़ हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे ज़रूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं
0: जी। तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
1: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
0: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीज़ें इसमें ऐड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
1: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे
0: जी।
1: तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएं।
0: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति में गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।
1: आपकी खिदमत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए आप सुनते हैं पूर्णम अल्हाबादी का कलाम, स्वर है मुन्नी बेगम का।

मीताली सिंह के स्वर में नसीम अजमेरी का एक कलाम अभी आपने सुना। इसी के साथ आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत पेश कर रहे हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। गीत को आवाज़ दी है आशा भोसले, शरद कुमार और अमिताभ ने। आनंद बख्शी का लिखा गीत है और धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अगले सोपान में शिव हरी का संगीत निर्देशन, निदा फाजली के बोल, आवाज़ हैं पामेला चोपड़ा की और फिल्म है सिलसिला।

श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और भूपेंद्र को फिल्म एतबार में। हसन कमाल का लिखा गीत है और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ढलती शाम में खामोशी ओढ़े इस शाम में आइए अब सुनते हैं जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है शैलेंद्र सिंह ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। धीरे धीरे कार्यक्रम अपने समापन की ओर और कार्यक्रम का अगला गीत आपको पेश कर रहे हैं द ज्वेल थीफ फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, शैलेंद्र का लिखा गीत है और धुन तैयार की है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर के बोल। फिल्म का नाम है बलमा और गीत गवा दी है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

बलमा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, प्रसार भारती अब न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. A. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sancho border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
4: FM 100.8 MHz aur Prasar Bharati app News on AIR par hum Akashvani ke Almuda kendra se bol rahe hain. Shrota, ratri ke 11:10 aur 14 second hue hain. Ab hamari aaj ki sayankalin sabha ke prasaran यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।